ज्ञातिं स्वकं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां।

रत्नाकरायो भगवते श्रीरामचंद्राय नमः चरणकमले सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि अर्जनम भवीजानाम अर्जनम सुगजम पदाम तर्जनम यमदूतानाम तिगर्जनम श्री सीताराम नाम महाराज की संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत राम नाम की गर्जना भाग्या यमदूत श्री सीताराम नाम महाराज की श्री राम लला भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जै।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर। आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz देश के विभिन्न भागों में। आप हमें DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म व्यूज़ के अलावा आप हमें आकाशवाणी के YouTube चैनल आराधना पर भी सुन पा रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 पूरे जोश और उत्साह के साथ जारी है। यात्रा अपने आखिरी चरणों में है। आपको बता दे चले, छड़ी मुबारक का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। आज यानी 13 अगस्त को जो है शारिका भवानी टेम्पल में खुसूसी पूजा पाठ किया जाएगा। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, श्रद्धा आस्था और अध्यात्म से भरी श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 जो है अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरणों की ओर बढ़ रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छड़ी मुबारक यानी भगवान शिवा की पवित्र छड़ी अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक पहुंचाकर यात्रा का जो है समापन को दिव्य रूप प्रदान करते जाता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा की वार्षिक यात्रा जो है 2026 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर इस पवित्र यात्रा का जो है समापन होता है। श्रोताओ, छड़ी मुबारक केवल एक पवित्र छड़ी नहीं बल्कि बाबा अमरनाथ जी की पारंपरिक पूजा और आस्था का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा में जो है पवित्र छड़ी को भगवान शिवा का स्वरूप मानकर पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ अमरनाथ गुफा तक ले जाया जाता है। इस पवित्र यात्रा में साधु संत महंत और शिव भक्त बड़े उत्साह के साथ शामिल होते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं, आज जो है इसी सिलसिले में छड़ी मुबारक के सिलसिले में जो है शारिका भवानी टेम्पल में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया जाएगा।

आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा। बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, देश के विभिन्न भागों में आप में डीटीएच और आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआर पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोता, आपको बताते चले, इस वक्त हमारे साथ जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से हमारे संवाददाता जावेद मेहरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास, आइए सुनते हैं। जावेद, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: जी, बहुत शुक्रिया। पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा कर लौटे श्रद्धालुओं का दर्शन कर वापस अपने घरों को लौटना यहाँ जारी है। वही निवास स्थान भगवती नगर पर भी श्रद्धालु बने हुए हैं और मौसम के बेहतर होने की कामना में जुटे हुए हैं और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही उन्हें इस पवित्र यात्रा पर अनुमति मिल जाएगी। लेकिन इस दौरान यहाँ जो पूजा अर्चनाएं हैं वो बराबर चल रही है, क्योंकि छड़ी इस अंतिम चरण में छड़ी मुबारक की पूजा भी बराबर श्रीनगर में घाटी में चल रही है, जिसके तहत ही यहाँ भी पूजा अर्चनाओं का सिलसिला बराबर जारी है। इस बीच बादलों और सूर्य देवता की आत्मी जोड़ी भी चल रही है और इस दौरान दर्ज हरारत 35 डिग्री के करीब है और उमस भी लगभग 70-80% तक चली जाती है, जिससे गर्मी के साथ साथ उमस भी महसूस हो रही है और बारिश की संभावनाएं भी बनी है। इधर मौसम विभाग ने जम्मू के निवास स्थान से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई कई जगह पर तेज बारिश या कई हल्की बारिश का भी अनुमान जताया है, जिसके चलते खासतौर पर पहाड़ी श्रृंखलाओं में तेज बारिश का अनुमान पूरी तरह से बना हुआ है। इसी के चलते फिलहाल प्रशासन ने ये पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा को फिलहाल अनुमति ना देने का जो फैसला किया है वो अभी बना हुआ है और ये फैसला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और हिफाजत के मद्देनजर उठाया गया है। यहाँ देशभर से पहुंचे श्रद्धालुओं की जो संख्या अभी तक रही है वो लगभग कोई 4,80,000 के करीब रही, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इस आंकड़े के तहत इन तमाम श्रद्धालुओं का इंतजाम, इनकी मैनेजमेंट, इन्हें बाजाबता देश के विभिन्न भागों से जिस तरह से यहाँ पहुंचे हुए जम्मू के अलावा घाटी तक इन्हें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की गई और उसके अलावा इनके खाने पीने रहने और आराम का भी पूरी तरह से प्रबंधन यहाँ बराबर किया गया और एक बड़ी कामयाबी के तौर पर जो यात्रा है इस बार भी संपन्न होने के करीब है।

जी श्रद्धा की सुरक्षा व्यवस्था प्रबंधन उनके पूरे इंतजाम के लिए तमाम तर कोशिशों को यहाँ प्रशासन ने यकीनी बनाया। उसके साथ साथ जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जो मैनेजमेंट रही उन्होंने वक्त वक्त पर यहाँ समीक्षाएं की। यहाँ जो प्रशासन के अधिकारी हैं उन्होंने समीक्षाएं की, पुलिस सीआरपीएफ उसके अलावा जो प्रबंधन में जुड़े लोग थे जिसमें स्वयंसेवी संस्थाएं थी, लंगर समितियां थी, उन सब ने मिलकर इस यात्रा को एक इस बार भी एक कामयाबी की तरफ ले गए। और इसके साथ साथ इतना बड़ा आंकड़ा जो था ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा था जिसमें इंतजाम एक यात्रा जहां यात्री खुद सब इंतजाम करके यात्रा पर पहुंचते हैं और एक ये है एक ऐसी यात्रा है जो देश भर में इसलिए जानी जाती है जहां महीनों भर प्रशासन के अधिकारी मैनेजमेंट बोर्ड के जो अधिकारी और उसके अलावा जो हजारों लोग इस यात्रा से जुड़े होते हैं वो यात्रियों के सभी प्रबंधन का इंतजाम करते हैं, उनकी यात्रा को सफल बनाने में उनके साथ साथ चलते हैं और साथ साथ जो पूरे जो इस मैनेजमेंट का इंतजाम होता है उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो सुरक्षा होता है। और इस बार भी ये यात्रा अपने अंतिम चरण में है और सुरक्षा के साथ और बेहतर वातावरण में जो यात्रा है वो अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रही है। कल भी जानकारी के मुताबिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस अंतिम चरण में बुधवार को हरियाली अमावस और श्रावण अमावस्या के अवसर पर पवित्र छड़ी मुबारक को ऐतिहासिक शंकर आचार्य के मंदिर ले जाया गया। इस्लामी अखाड़े के मैं स्वामी अमरनाथ की इस पवित्र छड़ी मुबारक की अगुवाई मुख्य पुजारी महंत दविंद्र गिरी ने की और मंदिर परिसर में आयोजित पूजा अर्चना के दौरान शंखनाद वैदिक मंत्रचार से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। वैदिक भजनों के बीच पवित्र गदी की विशेष पूजन भी किया गया और जिसमें महंत दविंद्र गिरी और इनके साथ आए साधुओं के तमों ने जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में शांति सद्भाव समृद्धि के लिए सामूहिक प्रार्थना भी की। जो एक जो इस यात्रा जो इस पूजन की और इस यात्रा की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि पूजा के साथ साथ जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश की शांति सद्भाव समृद्धि की जो यहाँ कामनाएं की जाती है वही इस यात्रा का एक मैं कहूँ तो एक बहुत बड़ा जिस्त है जिसने इस यात्रा को एक सदियों से कायम रखा है। सदियों से ये यात्रा हमारी पहचान रही है, हमारी मेहमान नवाजी की, हमारे जो इंतजाम की और सदियों से महाराजों के टाइम से लेकर आज तक बराबर ये यात्रा उसी सद्भाव के साथ उसी जोश खरोश के साथ बराबर चलती आ रही है और बराबर चलती आ रही है। अब अभी जो महंत दविंद्र गिरी के मुताबिक उन्होंने बताया कि जो ये शंकराचार्य की पहाड़ी की चोटी पर स्थित ये सुरमय मंदिर है ये वास्तव काल में उससे जुड़ा उदाहरण है उस बात का कि सदियों से यहाँ जो श्रद्धालु है यहाँ पहुंचते आए हैं। यहाँ उन्होंने महादेव जो है भगवान महादेव की जो जो उसकी उसकी उसको ढूंढने की जो लालसा रही है साधुओं संतों की वो पूरी इस श्रृंखलाओं में चलती आ रही है और आज भी उसका ये उदाहरण है कि आज भी ये पूजा बराबर उसी सद्भाव के साथ उसी समृद्धि के साथ बराबर चलती आ रही है और हमें उम्मीद है कि ये यात्रा आगे भी चलती रहेगी और आगे भी ये हमारी पहचान हमारी जो मेहमान नवाजी की पहचान है हमारे जो यहाँ इंतजाम की पहचान है पूरे देश में इस तरह की यात्रा पहली मिसाल है जिसमें तमाम किस्म की जो इंतजाम होते हैं वो प्रशासन स्वयंसेवी संस्थाएं स्थानीय लोग और सभी लोग मिलकर करते हैं जिससे ये हमारी पहचान बनी हुई है। और आज के प्रोग्राम के तहत भी छड़ी मुबारक को जानकारी के मुताबिक शारिका मंदिर में जाया जाएगा जहां उसकी पूजा होगी और ये बराबर ये सिलसिला इस अंतिम चरण में चलता रहे।

0: और आखिर में ये छड़ी मुबारक भगवान भोलेनाथ के द्वार पर पहुंचेगी, जहां इसका पूजन होगा और उसी समृद्धि और सद्भाव के साथ इस यात्रा का, इस वर्ष का अंतिम चरण चलेगा। मैं उम्मीद है कि ये यात्रा इसी सद्भाव के साथ चलती रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जावेद विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए,
0: बहुत शुक्रिया।
1: श्रोता, ये थे जावेद मेहरा, जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अपडेट दे रहे थे, मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र जो है अपडेट्स दे रहे थे और बता रहे थे कि छड़ी मुबारक का जो सिलसिला है, पूजा का जो सिलसिला है, जम्मू में भी बदस्तूर जारी है और पूरे जोश और उत्साह के साथ जो भक्त जो है खसूसी पूजा पाठ का जो है अहतमाम करते हैं। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि आज जो है, आज के दिन जो है छड़ी मुबारक को, आज यानी 13 अगस्त को जो है छड़ी मुबारक को शारिका भवानी टेम्पल पहुंचाया जाएगा, वहां खसूसी पूजा पाठ का भी आयोजन होगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग, आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा।

0: श्री अमरनाथ यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम। देश के विभिन्न भागों में आप हमें डीटीएच, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन एआर तथा आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता इस तारिक जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास, आइए सुनते हैं। तारिक, स्वागत करते हैं आपका।
1: बहुत शुक्रिया और सभी श्रोताओं को मेरा शुभ प्रभात। तो 57 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के अब महज 15 दिन शेष रह गए हैं। फिलहाल बदलते मौसम की गहमा गहमी दोनों मार्ग बालतल और पहलगाम से मुअत्तल रखी गई है। श्री अमरनाथ

0: जी यात्रा 2016 के सिलसिले में रिवायती छड़ी मुबारक से मुतलिक अहम मजहबी रसूमात और प्रोग्रामों का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक शिव और शक्ति के प्रतीक मुकदस छड़ी मुबारक के सिलसिले में मुख्तलिफ मंदिरों में खसूसी पूजा और मजहबी रसूमात का अहतमाम किया जा रहा है। शेड्यूल के मुताबिक यानी गुजश्ता दिन 12 अगस्त को शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर में दर्शन की प्रक्रिया हुई, जबकि 13 यानी आज को शारिका भवानी मंदिर में खसूसी पूजा अदा की जाएगी। इस तरह 15 अगस्त को दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में छड़ी स्थापन की रस्म अंजाम दी जाएगी, जबकि 17 अगस्त को नाग पंचमी के मौके पर छड़ी पूजन होगा।
1: जी
0: तो रिवायती मजहबी सफर के तहत 22 और 23 अगस्त को छड़ी मुबारक का पहलगाम की गौरी शंकर मंदिर में भूमि पूजन के बाद रात का कयाम पहलगाम में ही होगा, जबकि 24 अगस्त को चंद्रवारी में रात गुजारी जाएगी। 25 अगस्त को शेषनाग में रात का कयाम मुकर्रर है। शेड्यूल के मुताबिक 26 और 27 अगस्त को छड़ी मुबारक पंचतरणी में रात का कयाम करेंगे, जिसके बाद 28 अगस्त को मुकदस गुफा में दर्शन और खुसूसी मजहबी रसूमात के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का रिवायती इख्तिताम पजीर श्रवण पूर्णिमा के दिन होगा। तो अभी जो आज की बात करें तो आज बात करने के बारे में हम ज्यादातर मौसम पे नजर
1: जी
0: बनाए हुए हैं। तो श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहलगाम था पवित्र गुफा रिवायती मार्ग पर आज मौसम अब आलूद और सर्द रहने का इम्कान है, जबकि बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश बारिश या बूंदाबांदी भी मुतवक्का है। गुफा के करीब की नमी सतह 96% के दरमियान रहने की इम्कान है। मौसम की पेशगोई के मुताबिक अमरनाथ गुफा के इलाके में दर्जे हरारत तकरीबन 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रह सकता है, जबकि दोपहर के बाद हल्की बारिश या बारिश की फुहार का इम्कान 35 से 65% तक है। इधर पहलगाम या यात्रा मार्ग के दीगर इलाकों में आसमान ज्यादातर उबरालू रहने के साथ साथ दिन के अवकात में दर्जे हरारत 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की तवक्को है। तो अभी जो हम बात करें तो इस वक्त मौसम खुशगवार है और धूप भी निकल आई है, लेकिन इसके बाद भी जो प्रडिक्शन हुई है जो
1: जी
0: मौसमियात की विभाग की से हमें इतला मिली है, तो ये इतला मैं दे रहा हूँ।
1: जी
0: लेकिन बजाय तो मौसम खुशगवार है और धूप भी निकल आई है, और हाल बरसों और जारी मौसमी हालात के बायस कई मकाम पर ये जो हमारी यात्रा ट्रैक है
1: जी
0: रास्ते में अभी थोड़ी सी फिसलन कहीं कहीं के पे दिखाई गई है। तो इसके साथ ही ट्रैक को पहुंचने वाले नुकसान और हालिया शदीद बारिशों के पेश नजर श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों पहलगाम और बालतल रास्तों से आर्जी तौर पे मुअत्तल है, जिसकी मैंने पहले भी जिक्र किया। मुतलक
1: जी
0: इदारों की जानिब से यात्रा मार्ग की बहाली और मरम्मत का काम भी जारी है। इसके साथ ही इंतजामिया ने जो हमारी प्रशासन है उन्होंने यात्रियों को मशवरा दिया है कि वो यात्रा के बाकायदा बहाली तक ट्रैक पर जाने या पैदल सफर करने की कोशिश ना करें और सरकारी हिदायत पे बराबर अमल करें। बीआरओ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है बारिशों से
1: जी
0: मुतासर हसास मुकाम पर मरम्मत मलबा हटाने और रास्ते को बहाल करने का काम बड़े पैमाने पर अंजाम दे रही है। कुल मिलाकर 3 जुलाई से अब तक जो है 4,80,000 से जायद श्रद्धालु श्री अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। ये जो एक रिकॉर्ड के तौर पे अभी देखा जा रहा है, क्योंकि जो प्रशासन का जो टारगेट था वो 4.5 लाख तक था
1: जी
0: और ये अभी उससे ज्यादा हो गया है। और ये भी सच है कि आखिरी दिनों में यात्रा में जो भक्तों की जो तादाद होती है वो धीमी पड़
1: जी
0: जाती है। तो हम यही कह सकते हैं कि और यही कामना भी कर सकते हैं कि बाबा बर्फानी के सभी श्रद्धाओं की मनोकामना पूरी हो और इनकी यात्रा सुखद सुरक्षित और मंगलमय रहे। जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद तारिक विस्तार में जानकारी देने के लिए। श्रोता ये थे इस तारिक अपडेट दे रहे थे। आकाशवाणी का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स तथा आकाशवाणी की यूट्यूब चैनल आराधना पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोताओं आकाशवाणी क्षण-क्षण की सूचनाएँ आप तक पहुँचाते रहेगा, बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 8 बज चुके हैं, आइए आप समाचार सुनते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपरलीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
2: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति

0: सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनु सिंह की खंडपीठ ने यह कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
2: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
3: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
4: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोच के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश में बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
5: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होगा।

0: और डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गाँव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
2: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक हैं, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्र पत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है।
3: 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
1: केरलम में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
4: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्णाकुलम के लुलू मॉल में और एजीमाला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चौबा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
5: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है, रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुने। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने, बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा

0: फैसला राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास। डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया। कहा, बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती, भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल रेफर्ड टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर फर्दर स्क्रूटनी। कैलकटा हाई कोर्ट कैंसल्स ऑल OBC सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर रिवाइज्ड रूल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय previous Trinamool Congress government in West Bengal. Punjab pharmacy officers' recruitment stayed by High Court over allegations of organized cheating. IMD predicts heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal due to formation of low pressure area over North Bay of Bengal. More than 30 civilians, including women and children, killed in Pakistani airstrikes in Surab district of Balochistan. And in cricket, BCCI confirms India versus Afghanistan T20 international series in September. And now the news in detail. Both Houses of Parliament have given their approval to refer the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee, JPC, for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Minister of State for Home Nityanand Rai moved a motion in the Lok Sabha to refer the bill to a JPC comprising members of both the houses for wider consultations. The committee will consist of 21 members from the Lok Sabha nominated by the Speaker and 10 members from the Rajya Sabha nominated by the Chairman. The committee will submit its report to this House by the last day of the first week of the winter session. The Rajya Sabha also approved the motion to nominate 10 members from its side to the Joint Committee for consideration of the FCRA Amendment Bill 2026. Today is the last day of the monsoon session of Parliament. The session, which began on the 20th of last month, will conclude today. The Rajya Sabha is scheduled to take up the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 today for consideration and passage. Both Houses of Parliament are also scheduled to take up private members' business today. The Calcutta High

0: Cowan's journey from humble beginnings to the presidency, says the statesman. The Indian Express, on its editorial page under the caption, "The Next Step to the Moon," talks about India-US partnership in space cooperation. The two space agencies, ISRO and NASA, have never worked so closely together. With NASA asking ISRO to join its moon base program, an ambitious project to establish a permanent research station on the moon where astronauts can live, work and carry out experiments for extended periods of time. And finally, catching the Gen Z mode, Delhi police goes kuchu kuchu to warn against deadly manja, mentions the Pioneer. And with that, it's back to you, Sarabjeet.
1: Thank you, Sarah. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Foreign Contribution Regulation Amendment Bill referred to Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. Calcutta High Court cancels all OBC certificates issued under revised rules introduced by previous Trinamool Congress government in West Bengal. Punjab Pharmacy Officers recruitment stayed by High Court over allegations of organized cheating. IMD predicts heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal due to formation of low pressure area over North Bay of Bengal. More than 30 civilians, including women and children, killed in Pakistani airstrikes in Surab district of Balochistan. And in cricket, BCCI confirms India versus Afghanistan T20 international series in September. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल मजीद जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द किया गया है। मगरबी बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने साबिका तृणमूल कांग्रेस सरकार के शुरू करदा नए जाब्तों के तहत जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट मनसूख कर दिए हैं। हाई कोर्ट ने मुनज्जम धोखाधड़ी के इल्जामात के तनाजुर में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर्स की भर्ती पर रोक लगा दी है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाली खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। बलूचिस्तान के सूराब जिले में पाकिस्तानी फजाई फौज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा आम शहरी मारे गए हैं। और क्रिकेट में बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान टी20 सीरीज होने की तस्दीक की है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC के सुपुर्द करने के लिए मंजूरी दे दी है। मजकूरा बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक 2010 के एक्ट में मजीद तरमीम करना है। इस बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात के इस्तेमाल को और ज्यादा शफाफ और जवाबदेह बनाना है। उमूर दाखिला के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने यह बिल वसीतर सलाहो मशवरे की खातिर JPC के पास भेजने के लिए लोकसभा में एक तहरीक पेश की। JPC दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल होगी। इस कमेटी में लोकसभा के 21 अरकान होंगे जिन्हें स्पीकर मौसूफ नामजद करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा से 10 अरकान भी इसमें शामिल होंगे जिन्हें चेयरपर्सन नामजद करेंगे। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट मौसम सरमा के इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन ऐवान में पेश कर देगी। इधर राज्यसभा ने भी गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर वखौज की खातिर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के लिए अपने 10 अरकान को नामजद करने की तहरीक मंजूर कर ली है। आज पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आखिरी दिन है। ये इजलास गुज़श्ता महीने की 20 तारीख को शुरू हुआ था। राज्यसभा में आज कानून और मादनियात के फरोख और उन्हें मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर वखौज और इसे मंजूर किया जाना है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज प्राइवेट मेंबर के कामकाज पर भी गौर वखौज होना है। मगरबी बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने साबिका तृणमूल कांग्रेस सरकार के शुरू करदा ओबीसी ए और ओबीसी बी जुमरों के तहत जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट मनसूख कर दिए हैं। जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस अनुज सिंह पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने कहा कि रियासत में अब ओबीसी ए और ओबीसी बी का कोई जुमरा नहीं है। अदालत ने कहा कि साबिका निजाम

0: के तहत जारी किए गए सर्टिफिकेट अब काबिले कबूल नहीं रह गए हैं। फैसले के मुताबिक इस तरह के सर्टिफिकेट रखने वाले अफराद को अब आम जुमरे का तसव्वुर किया जाएगा। ओबीसी तनाजा साल 2010 के बाद उस वक्त शुरू हुआ था जब उस वक्त की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने ओबीसी तबकों को दो जुमरों ओबीसी ए और ओबीसी बी में बांट दिया था। साल 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 66 तबकों को ओबीसी फहरिस्त में शामिल किए जाने को रद्द कर दिया था और नए सिरे से सर्वे कराने का हुक्म दिया था। 2026 में बीजेपी सरकार के इख्तदार में आने के बाद उसने ओबीसी ए और ओबीसी बी जुमरों को खत्म कर दिया था और वाहिद ओबीसी जुमरा शुरू किया था। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साबिका इंतजामिया के चैलेंज को भी वापस ले लिया था। कानूनी चैलेंज वापस लिए जाने के तनाजुर में पहले जारी किए गए सर्टिफिकेट की कानूनी एतबार से कोई बुनियाद नहीं रह गई थी और इस पस मंजर में बुध के रोज हाईकोर्ट का ये हुक्म सामने आया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती में पेपर लीक के इल्जामात के मामले पर 454 फार्मेसी अफसरों के ओहदों के लिए तकर्रुर के अमल पर रोक लगा दी है। इसके लिए इम्तिहान पिछले महीने की 19 तारीख को हुआ था। फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने इन ओहदों के लिए इश्तिहार दिया था। इस केस की अगली समाअत अब 17 सितंबर को होगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इम्तिहानात के मामले पर सियासी तूफान के तनाजुर में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का ये हुक्म इल्तवा सामने आया है। आला तकनीक के पेन कैमरों और दीगर आलात के जरिए मुबैना पेपर लीक के चंद घंटों के अंदर पंजाब पुलिस ने तीन जिलों फरीदकोट, कोटकापुरा और फिरोजपुर में इम्तिहानात के 25 मराकज पर कार्रवाई के बाद एक बैन रियासती चीटिंग रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस ने साजिश रचने वाले 7 बड़े मुलजिमों और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जो इस केस में सीधे मुलव्वस थे। छानबीन से मालूम हुआ कि धोखाधड़ी के इस रैकेट के तहत उम्मीदवारों से इम्तिहान में पास होने की गारंटी के लिए 3.5 लाख रुपए से लेकर 13 लाख रुपए तक वसूल किए जा रहे थे। इस ओहदे के लिए तकरीबन 7,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया था। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने इल्ज़ाम लगाया है कि पंजाब सरकार ने जुलाई में हेल्थ साइंसेज की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के जेरे एहतमाम कराए गए फार्मेसी ऑफिसर्स भर्ती इम्तिहान में मुबैना पेपर लीक मामले पर अवाम को गुमराह किया है। नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस इम्तिहान पर रोक लगा दी है और ये सवाल करते हुए सख्त रायजनी की है कि ये इम्तिहान पहले क्यों नहीं रोका गया और आया ये इम्तिहान नए सिरे से कराया जाना चाहिए या नहीं।
2: पंजाब की सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी और झूठ परोस रही थी, जबकि पेपर लीक हुआ था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने, छात्रों के सामने जो दिन रात परिश्रम कर रहे थे, उनके सामने सच्चाई आई है।
0: झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी के 14वें इम्तिहान में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ उम्मीदवारों की तरफ से एहतजाज जारी है। उम्मीदवार इस इम्तिहान में हुई मुबैना बेजाबतगियों की गैर जिम्मेदाराना जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म फोरम की मीटिंग मुनक्किद की गई जिसमें इस तहरीक की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एजाज दिए जाने की एक खसूसी तकरीब में 115 फनकारों को 2024 और 2025 के संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप और अवार्ड्स अदा करेंगी। इस मौके पर सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और सकाफत के वजीर मुमलिकत राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: एकेडमी अवार्ड्स देने का सिलसिला 1952 से जारी है। ये एजाज न सिर्फ उम्दा कारकर्दगी और कामयाबी के आला तरीन मयार की अक्कासी करते हैं बल्कि इनके जरिए उम्दा इनफरादी काम और अहम रोल को तस्लीम भी किया जाता है। एकेडमी फेलोशिप के एजाज के तहत 3 लाख रुपए दिए जाते हैं जबकि एकेडमी अवार्ड एक ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम के साथ साथ 1 लाख रुपए पर मुश्तमिल होता है। فیلوشپ اور ایوارڈ کے لیے منتخب کیے گئے افراد مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے

0: रोजनामा इनकलाब ने इस खबर को अहमियत के साथ शाये किया है कि एहतजाज के दरमियान FCRA तरमीमी बिल मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सुपुर्द JPC में बिल की दफात पर तफसीली गौर किया जाएगा। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त की रस्म इजरा के मौके पर वजीर आजम के इस बयान को अखबारात ने शे सुर्खी बनाया है कि साबिक सदर की जद्दोजहद और खिदमत एक काबिल तकलीद कहानी।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। गैर मुल्की एहतियात को मुंसबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल मजीद जांच के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सुपुर्द किया गया है। मगरबी बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने साबिका तृणमूल कांग्रेस सरकार के शुरू करदा नए जाब्तों के तहत जारी किए गए सभी OBC सर्टिफिकेट मनसूख कर दिए हैं। हाई कोर्ट ने मुनज्जम धोखाधड़ी के इल्जामात के तनाजुर में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर्स की भर्ती पर रोक लगा दी है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाली खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। बलूचिस्तान के सूराब जिले में पाकिस्तानी फजाई फौज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा आम शहरी मारे गए हैं। और क्रिकेट में BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान T20 सीरीज होने की तस्दीक की है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, आपको याद दिलाते चले, छड़ी मुबारक का जो पवित्र सफ़र है वो शुरू हो चुका है। आज श्रीनगर में जो है खसूसी पूजा पाठ का आयोजन किया जाएगा। श्रोताओं, छड़ी मुबारक केवल एक पवित्र छड़ी नहीं बल्कि बाबा अमरनाथ जी की पारंपरिक पूजा और आस्था का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा में पवित्र छड़ी को भगवान शिवा का स्वरूप मानकर पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ अमरनाथ गुफा तक ले जाया जाता है। इस पवित्र यात्रा में साधु संत, महंत और शिव भक्त बड़े उत्साह के साथ शामिल होते हैं। 15 अगस्त 2026 को जो है छड़ी स्थापना श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा स्थित श्री अमरेश्वर मंदिर में पवित्र छड़ी की स्थापना की गई और 15 अगस्त के बाद इस स्थापना के बाद जो है यही से छड़ी मुबारक की आगे की धार्मिक यात्रा को जो है लिया जाएगा। 17 अगस्त को छड़ी पूजन, इस दिन को नागपंचमी के पवित्र अवसर पर दशनामी अखाड़ा में पारंपरिक छड़ी पूजन किया जाएगा। इस अवसर पर भगवान शिवा की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और देश दुनिया के भक्तों के कल्याण, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की जाएगी। 22 को मुख्य छड़ी यात्रा का प्रारंभ होगा। 22 अगस्त से छड़ी मुबारक की मुख्य पवित्र यात्रा शुरू होगी। महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में पवित्र छड़ी को जो है अमरनाथ जी की गुफा की ओर ले जाया जाएगा। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़। देश के विभिन्न भागों में आप हमें डीटीएच के आराधना चैनल, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन एयर तथा आकाशवाणी की ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के अलावा आप हमें आकाशवाणी की यूट्यूब चैनल आराधना पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोतो, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 4.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए। हालांकि कुछ एक दिनों से जो है दोनों मार्गों पर फिलहाल के लिए जो है यात्रा को स्थगित किया गया है। ताहम इस बात में कोई दोराय नहीं है कि इस वर्ष की यात्रा में जो है देश के विभिन्न भागों से आए सभी तीर्थ यात्रियों ने जो है बड़े जोश और खुश असलूबी के साथ जो है इस यात्रा को मुकम्मल किया। जैसा कि हम बता चुके हैं कि इस वर्ष जो है 4.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिसमें स्थानीय नागरिक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, श्री अमरनाथ

जी श्राइन बोर्ड, बाकी जो सरकारी इदारे हैं, सभी ने जो है मिलकर इस लक्ष्य को पार करने में बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की और उसका नतीजा हम सबके सामने है। पूरी ये नंबर्स जो है, रिकॉर्ड तोड़ नंबर्स जो है हमारे सामने हैं और इस रिकॉर्ड को पार करने के लिए, नंबर्स को पार करने के लिए बहुत सारी मेहनत हुई, बहुत सारी मेहनत स्थानीय नागरिकों ने की, स्थानीय प्रशासन और सरकार के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं एक साथ मिलकर उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि इस वर्ष की यात्रा को जो है यादगार बनाया जाए। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, यात्रा जो है अपने आखिरी चरण में आ चुकी है। 15 अगस्त से जो है छड़ी मुबारक का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि कुछ एक दिन पहले ही खसूसी जो पूजा पाठ की जाती है छड़ी मुबारक को लेकर वो हुई, और आज जो है श्रीनगर में एक और खसूसी पूजा पाठ का जो है अहतमाम किया जाएगा, और उसके बाद जो है 15 अगस्त को छड़ी मुबारक का जो सिलसिला है शुरू होगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा श्राइन बोर्ड, स्थानीय नागरिक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी ने मिलकर जो है बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद जो है इस बात को यकीनी बनाया है कि इस वर्ष जो है अभी तक 4.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा पहुंचकर शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं। बालतल के मार्ग से, पहलगाम के प्राचीन मार्ग से जो एक तवील रास्ता है और कठिन रास्ता है, उन कठिन रास्तों को पार करके जो है शिव भक्तों ने पवित्र गुफा पहुंचकर शिवजी के दर्शन प्राप्त किए। हमारे ईश्वर से यही प्रार्थना कि सभी तीर्थयात्रियों की यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय रहे और वो खूबसूरत लम्हात, खूबसूरत यादें वो अपने साथ ले जाए। और ईश्वर से यही प्रार्थना कि हम सब की ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी में जो है हमेशा हमें खुशियाँ मिले और उन खुशियों के साथ जो है हम पूरी ज़िंदगी को जिए। आकाशवाणी क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचा दे रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष प्रसारण। आप FM बालतल, FM पहलगाम, देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर तथा आकाशवाणी की OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोता, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स उनके पास, आइए सुनते हैं। तस्कीन, स्वागत करते हैं आपका।
1: जी, शुक्रिया।

0: राष्ट्रीय राजमार्ग ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बहाल है। आज सुबह से ही धूप निकली है, हालांकि कल बहुत गर्मी थी, मगर बादल भी थे और गर्मी भी थी, बहुत ह्यूमिडिटी थी कल। तो आज सुबह से ही आसमान बिल्कुल खुला हुआ है और धूप निकली हुई। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है ट्रैफिक के लिए बराबर जारी है, दो तरफा ट्रैफिक इस वक्त चल रहा है हाईवे पर, जम्मू से श्रीनगर की तरफ और श्रीनगर से जम्मू की तरफ। इस दौरान जो श्री अमरनाथ यात्रा है, आज 5वें दिन भी मुअत्तल रही, सस्पेंड रही, तो आज भी किसी किस्म का कोई इस पर पेश रफ्त नहीं है और कोई गाड़ी यात्रा के रिलेटेड जम्मू से रवाना नहीं की गई। इस दौरान जो मौसमी सूरतहाल बिल्कुल ठीक है, गुज़श्ता रात हल्की हल्की बारिशें हुई है कुछ इलाकों में, लेकिन उसका जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कोई असर नहीं पड़ा। जो मामूल का ट्रैफिक है नेशनल हाईवे पर, वो बगैर किसी खलल के जारी है और हजारों की तादाद में जो ट्रैफिक है, मुसाफिर ट्रैफिक है, वो जम्मू से कश्मीर की तरफ आज सुबह ही रवाना किया गया है और कश्मीर से जम्मू की तरफ, और ये सिलसिला जारी है। जबकि ट्रकों का अब पिछले जब से यात्रा मुअत्तल हुई, तब से ट्रकों का जो पहले वन वे होता था, तो आज जो क्योंकि वजीर आला साहब ने पहले कहा है कि जो प्रायोरिटी होगी, जो फ्रूट वाले ट्रक्स होंगे कश्मीर से, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो इसलिए उनको भी रोजाना की बुनियादों पर जम्मू की तरफ निकालने की कोशिश की जाती है और ये सिलसिला हाईवे पर जारी है। बाकी मौसम बिल्कुल खुशगवार है, धूप खिली खिली धूप है आज सुबह से ही निकली हुई राष्ट्रीय राजमार्ग पर, और राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल ट्रैफिक के लिए बहाल है और यात्रा के लिए जो सस्पेंशन है 5वां दिन, तो उम्मीद है कि जो इसका 28 तारीख को इख्तिताम पजीर होनी है, अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, तो उससे पहले अभी कोई हतमी फैसला हर सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है, क्योंकि अभी मौतल है, खत्म नहीं की गई है यात्रा, इसलिए अभी भी जो उम्मीदें हैं बहुत सारे लोगों को, जैसे लंगर वाले हैं यहाँ पर रामबन डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे
1: जी
0: निकल भी गए हैं लेकिन कुछ अभी भी रुके हुए हैं, जिनको ये मतलब यकीन है कि अभी भी कुछ जो यात्रा जब रिज्यूम अगर होती है तो उनको भी अभी मतलब उम्मीद है, उसलिए उनको अभी यहाँ पर बानहाल में और रामबन में मतलब रखा गया है, उन्हें बंद नहीं किया गया, बल्कि बहुत सारे लंगर जो है उनने वाइंड अप कर दिया है। अभी बहुत सारे जो है वो मुसलसल काम कर रहे हैं, लगे
1: जी
0: हुए हैं जहाँ पर, जो उनके अपने सेवादार होते हैं, हर लंगर को दर्जनों की तादाद में जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग आते हैं खिदमत के लिए, जिनने बहुत खिदमत की, हजारों यानी 5 लाख से जायद यात्री अब तक कश्मीर से दर्शन करके लौट मतलब मुकम्मल कर चुके हैं, तो उन सब की खिदमत गुजारी में ये लगे रहे हैं और उसी जज्बे के साथ वो अभी भी यहाँ पर मुकीम है, मतलब कायम है, वो लंगर्स कुछ तो बंद भी हो गए हैं, इसलिए उन्हें अभी भी उम्मीद है कि शायद कोई आखिरी मतलब जो बंद की जाए
1: जी
0: यात्रा, तो उससे पहले मजीद मत कुछ यात्री कश्मीर की तरफ आए, तो उसके लिए वो अभी भी अपने लंगरों के साथ यहाँ बानहाल में भी और चंद्रकूट रामबन में भी बराबर मुकीम है और मुंतजिर है। जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद तस्कीन जानकारी देने के लिए।
0: शुक्रिया सर।
1: श्रोता ये थे मोहम्मद तस्कीन, राष्ट्रीय राजमार्ग से अपडेट दे रहे थे किस तरह से जो है आज दोनों रास्तों से जो है अप और डाउन कॉन्वॉय जो है गाड़ियों की राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौसम की खुशगवारी को मद्देनज़र रखते हुए जो है छोड़ा गया है, वही ट्रक्स को जो है प्रेफरेंस दी जा रही है और कोशिश यही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है खुशगवार मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक की मूवमेंट हो, ताकि रुकी पड़ी गाड़ियों को जो है अप और डाउन कॉन्वॉय में इन्वॉल्व किया जाए और दोनों अप और डाउन कॉन्वॉय को जो है ऐसे तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग पर छोड़ा जाए, ताकि किसी भी किस्म की दुविधा का सामना ना करना पड़े। आकाशवाणी संसद की सूचनाएं आप तक तो पहुंचाते रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी की इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ यात्रा 1026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोताओ, 9:25 हो चुके हैं, आइए आप समाचार सुनते हैं।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाज अख्तर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में खसूसी तकरीब के दौरान साल 2024 और 25 के लिए 115 फनकारों में संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप्स और अवार्ड्स अता करेंगी। इन फनकारों का ताल्लुक मौसीकी, रक्स, ड्रामा, फोक एंड ट्राइबल आर्ट, पपेट्री और थिएटर आर्ट के दीगर शोबों से है। तकरीब पर सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और कल्चर के वजीर मुमलकत इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं।

0: 17 अगस्त तक जारी रहने वाली इस मुहिम के तहत यूटी के तमाम अजला में तिरंगा रैलियों और दीगर प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है, जिनका मकसद हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती के जज्बे को फरोग देने के साथ साथ मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी के सपूतों को खराज अकीदत अदा करना है। इस साल हर घर तिरंगा मुहिम की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस साल वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल हो रहे हैं। कल SKICC श्रीनगर से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की कयादत में एक बड़ी तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें काफी तादाद में स्कूली बच्चों, सरकारी मुलाजमीन, सिक्योरिटी एहलकारों और समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर LG ने कहा,
1: मैं गर्व के साथ जम्मू कश्मीर के राष्ट्रनिष्ठ और समर्पित नागरिकों का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। वंदे मातरम अभियान में आपकी बढ़ चढ़ करके सहभागिता केवल उल्लेखनीय और प्रशंसनीय नहीं रही है, बल्कि वो पूरे राष्ट्र के लिए आज प्रेरणा का स्रोत बन गई। आपने सिद्ध कर दिया है कि जब राष्ट्र प्रेम जन जन की चेतना बन जाता है, तब इतिहास नई दिशा प्राप्त करता है। जम्मू कश्मीर में इसका साक्षात प्रमाण हमने देखा, लेकिन मुझे गर्व है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं, जम्मू कश्मीर के नागरिकों और प्रशासन के हमारे सहयोगियों ने वंदे मातरम अभियान में जम्मू कश्मीर को सबसे देश में सबसे श्रेष्ठ बनाने में सहयोग किया है।
0: इसी तरह की तिरंगा रैलियों का इनेकाद जम्मू और यूटी के दीगर अजला में भी किया गया। गरी असना जम्मू कश्मीर में आने वाली यौम आज़ादी तकरीबात को शाया निशान तरीके पर मनाने के लिए सलामती समेत तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। यूटी सतह की सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक़द हो रही है, जहां मेहमान खसूसी कौमी परचम फहराकर मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे। इसी तरह की तकारीब जम्मू और दीगर जिला तहसील सदर मकाम पर भी मुनक़द हो रही है। इन तकारीब पर मार्च पास्ट के अलावा स्कूली बच्चों की तरफ से रंगारंग तमदनी प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राणा ने कल लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जम्मू चैप्टर के एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर अनुज वैद भी LG मनोज सिन्हा से मुलाकात हुए। उन्होंने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर को मुअसर तरीके पर अमल लाने के लिए LG की सताइश की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कठुआ जिले के बाख्ता इलाके में मौजूद तारीखी गुरुद्वारा चरण कमल साहिब की जामे तरक्की के लिए 5,15,00,000 रुपए लागत वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। प्रोजेक्ट के तहत वहां एक नया लंगर हॉल और प्रेयर हॉल तामीर करने के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए जदीद तर्ज की सहूलियात कायम की जा सकेंगी। सरकार की तरफ से एक प्रेस बयान में कहा गया कि इस पहल से जम्मू कश्मीर में पिलग्रिमेज के बुनियादी ढांचे को तकवियत बख्शने में मदद मिलेगी। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने जम्मू कश्मीर में 7 सितंबर से 10 सितंबर तक मुनक़द होने वाले पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के एहसन इनाकात के लिए किए जा रहे इंतजाम का एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जायजा लिया। उन्होंने मुतलका महकमों को हिदायत दी कि वह फेस्टिवल को कामयाब बनाने के लिए पेशगी में तमाम इंतजाम मुकम्मल करें। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के सूबाई कमिश्नरों पर जोर दिया कि वह ज़ाती तौर पर तमाम तैयारियों का अज़ खुद जायजा

लें। नाज़िमेतला श्रेया सिंघल ने इस मौके पर कहा कि इस फेस्टिवल के लिए 80 ममालिक से 1,100 फिल्में मौसूल हुई हैं। हुकूमत ने भारतीय व्यापार महोत्सव के दौरान जेके कारीगरी के नाम से एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म का आगाज किया है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर की मुस्तनद दस्तकारी मसनूआत को कौमी और आलमी खरीदारों तक पहुंचाना है। हुकूमत के मुताबिक ये इकदाम जम्मू कश्मीर की सदियों पुरानी दस्तकारी की विरासत की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। जेके कारीगरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत दीनदयाल अंत्योदया योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन के तहत शुरू किया गया है। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल महीदीन भट्ट ने कल एक मीटिंग के दौरान जिले में मिशन युवा की अमलावरी का जायजा लिया। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.6 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।

विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानु यथा सद्मिद्वृधे।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल एफएम पहलगाम। देश के विभिन्न भागों में आप हमें डीटीएच के माध्यम से आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर तथा आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोता, आपको याद दिलाते चले, आज 13 अगस्त को जो है श्रीनगर में छड़ी मुबारक की सिलसिले में जो है खसूसी पूजा पाठ का आयोजन किया जाएगा। 22 अगस्त जो है

मुख्य तौर पर छड़ी यात्रा का प्रारंभ होता है। 22 अगस्त से छड़ी मुबारक की मुख्य पवित्र यात्रा शुरू होगी। महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में जो है पवित्र छड़ी को जो है अमरनाथ जी की गुफा तक ले जाया जाएगा। छड़ी मुबारक की यात्रा पारंपरिक पहलगाम मार्ग से आगे बढ़ेगी। 22 और 23 अगस्त पहलगाम में छड़ी मुबारक को जो है विश्राम करेगी। 22 और 23 अगस्त को पहलगाम में ही विश्राम होगा। पहलगाम पहुंचने पर भक्तों के बीच भक्ति और शिव नाम का माहौल जो है हमें देखने को मिलेगा। 24 अगस्त को जो है पवित्र छड़ी चंदनवाड़ी पहुंचाई जाएगी। यही से यात्रा और भी कठिन पहाड़ी क्षेत्रों की ओर बढ़ेगी। 25 अगस्त को शेषनाग में जो है शेषनाग में भी जो है विश्राम किया जाएगा। शेषनाग के आध्यात्मिक और प्राकृतिक वातावरण में भक्तों के लिए ये पड़ाव जो है विशेष महत्व रखता है। 26 और 27 अगस्त को छड़ी मुबारक पंचतरणी में 2 रात जो है विश्राम करेगी। 26 और 27 की रात को जो है छड़ी मुबारक पंचतरणी में रहेगी। पंचतरणी से पवित्र अमरनाथ गुफा का अंतिम चरण जो है शुरू होता है। यहाँ से हर भक्त के मन में एक ही आस होती है, बाबा बर्फानी की दिव्य दर्शन। 28 अगस्त को पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक, और फिर आता है वो पवित्र दिन जिसका हर शुभ भक्त बेसब्री से इंतज़ार करता है। 28 अगस्त रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर छड़ी मुबारक श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में पहुंचेगी। गुफा में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी और बाबा बर्फानी के चरणों में श्रद्धा अर्पित की जाएगी। इसी के साथ जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का पवित्र जो है समापन होता है। छड़ी मुबारक की पवित्र यात्रा जो है हमें केवल भगवान शिव के दर्शन के अवसर नहीं देती, बल्कि हमें श्रद्धा, संयम, सेवा और एकता का एक संदेश भी देती है। श्रोताओं, आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ है। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिए।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज। देश के विभिन्न भागों में आप हमें डीटीएस के माध्यम से आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआर तथा आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोताओं, जैसा कि आपको याद होगा, आज जो है छड़ी मुबारक का खसूसी पूजा पाठ श्रीनगर में मुनक्किद हो रहा है। कुल मिलाकर श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के में जो है 4.5 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं और इस आंकड़े को पार करने में जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय नागरिक और बहुत सारे विभागों ने जो है मिलकर इस लक्ष्य को पार करने में कामयाबी हासिल की है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सभी शिव भक्त जो है किसी भी किस्म की मुश्किल से जो है उन्हें सामना नहीं करना पड़ा और इस बात को यकीनी बनाया गया कि सभी तीर्थ यात्री जो है जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक दोनों मार्गों पर जगह जगह पर उनकी सेवा की जाए और उनकी सेवा में जो है 2400 घंटे स्थानीय नागरिक पेश रहे और इस आंकड़े को पार करने में कई एक विभागों ने काम किया जो दिन रात इस बात को यकीनी बनाने में लगे थे कि सभी तीर्थ यात्रियों की ये जो यात्रा है वो सफल, सुखद और मंगलमय हो। यही वजह है कि इस यात्रा में जो है, इस वर्ष की यात्रा में जो है, ये आंकड़ा पार हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ एक दिनों से जो है यात्रा को फिलहाल स्थगित किया गया है, ताहम छड़ी मुबारक का जो पवित्र सफ़र है वो शुरू हो चुका है। हालांकि 22 अगस्त से जो है ये सफ़र पहलगाम की ओर रवाना किया जाएगा और इस बीच जो है पंचतरणी, शेषनाग और भी कई एक रास्तों पर जो है छड़ी मुबारक को रखा जाता है और इस बीच जो है साधु संत और कई एक शिव भक्त जो है इस यात्रा में जुड़े होते हैं और रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर जो है इस छड़ी मुबारक को जो है पवित्र गुफा पहुंचाया जाता है। उसके बाद होते हुए ये यात्रा जो है अपने समापन को पहुंचती है। आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ है, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छड़ी मुबारक यानी भगवान शिवा की पवित्र छड़ी अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक पहुंचाकर यात्रा का जो है समापन को दिव्य रूप प्रदान कर दिया जाएगा। श्री अमरनाथ जी वार्षिक यात्रा 2000

2026 में जो है 4.5 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। छड़ी मुबारक का जो सिलसिला है, ये यात्रा है, शुरू हो चुकी है। छड़ी मुबारक केवल एक पवित्र छड़ी नहीं बल्कि शिव जी की पारंपरिक पूजा और आस्था का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा में पवित्र छड़ी को भगवान शिवा का स्वरूप मानकर

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है। इस वर्ष जो है 4.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतिनिधित्व करती है। इस यात्रा से जुड़े सभी श्रद्धालुओं से यही निवेदन कि आप जो है इन खूबसूरत लम्हात को, खूबसूरत यादों को जो है समाये रखें अपने पास। और इस बात में कोई दोराय नहीं है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इस प्रोसेस में निचली सतह से लेकर जो है

सभी लोगों ने एक साथ मिलकर यह मुमकिन बनाया है कि इस आंकड़े को पार करने में जो है स्थानीय नागरिक प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं मिलकर उन्होंने जब काम किया और एक साथ मिलकर इस बात को यकीनी बनाया कि श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है वो अपने उस मोड़ में आ पहुँचे जिसे हम अंतिम मोड़ कहते हैं। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि 15 अगस्त से जो है छड़ी मुबारक का सिलसिला जो है शुरू हो जाएगा। हालांकि उससे पहले भी श्रीनगर में एक दो जगह जो है छड़ी मुबारक की को लेकर जो है खसूसी पूजा पाठ का अहतमाम किया गया और आज भी जो है श्रीनगर में छड़ी मुबारक को लेकर जो है खसूसी पूजा पाठ का अहतमाम किया गया है। और इसके बाद जो है ये सफ़र पहलगाम की ओर निकलेगा, ये कारवां जो है पहलगाम की ओर निकलेगा। इसमें साधु संत और बाकी जो यात्रा से जुड़े लोग हैं वो इसमें जुड़ेंगे और ये यात्रा का जो काफिला है पहलगाम से होते हुए पंचतरणी, शेषनाग और उसके बाद रक्षाबंधन के मौके पर, पवित्र मौके पर जो है छड़ी मुबारक को पवित्र गुफा पहुँचाया जाएगा। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि इस वर्ष जो है सभी तीर्थ यात्री जो है प्रशासन द्वारा उठाए गए इकदाम से खुश और प्रसन्न दिखाई दिए और हर जगह जहाँ जहाँ भी हमारे संवाददाताओं ने तीर्थ यात्रियों से बात की, बात चाहे जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप की हो, पांथा चौक ट्रांजिट कैंप की बात हो, बाल्टन मार्ग की बात हो या पहलगाम के प्राचीन मार्ग की बात हो, हर जगह जो है हमारे संवाददाताओं ने ये रिपोर्ट किया कि सभी तीर्थ यात्री खुश और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और इंतज़ाम से वो बहुत ही मुतमईन दिखाई दे रहे थे और इस वर्ष की यात्रा से वो बड़े खुश नज़र आए और इन खूबसूरत यादों को, इन खूबसूरत लम्हात को वो जो है समेटे अपने साथ ले गए। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कुछ एक दिनों से यात्रा फ़िलहाल के लिए स्थगित की गई है कुछ एक कारणों को लेकर, ताहम यात्रा जो है जारी है और आगे का सफ़र जो है छड़ी मुबारक का ये जो कारवां है वो आगे बढ़ेगा। और इसकी शुरुआत जो है कुछ एक दिन पहले ही हुई, श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा से जो है अमरीश्वर मंदिर से जो है इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद शंकराचार्य और भी कई एक मंदिरों में जाकर जो है इस छड़ी मुबारक का जो है खसूसी पूजा पाठ किया जाता है और बाद में जो है रक्षाबंधन के मौके पर इसे पवित्र गुफा अमरनाथ पहुंचाया जाता है। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग। विशेष प्रसारण आप FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से आराधना चैनल पर सुन सकते हैं, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल, FM पहलगाम, देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTS के माध्यम से, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, आकाशवाणी की OTT प्लेटफॉर्म वेव्स तथा आकाशवाणी की YouTube चैनल आराधना पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 12 बज चुके हैं, आइए अब समाचार सुनते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल

0: सिलसिले स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। इस दौरान लोक परीक्षा, अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, अधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधि संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई में बार बार बाधा आई। भारतीय जनता पार्टी ने आज विपक्षी दलों पर पंजाब और झारखंड के छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
1: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन मिजो जिरलाई पावल MZP ने मिजोरम लोक सेवा आयोग में सुधारों की मांग को लेकर चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया है। संगठन के नेता ने बताया कि सरकार द्वारा आयोग में सुधार के लिए एक समिति गठित किए जाने के बाद ये आंदोलन समाप्त कर दिया गया। संगठन ने 6 अगस्त को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अपना आंदोलन शुरू किया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्यवस्था के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की है। ये राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को दी जाएगी। ये वितरण जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
2: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है, आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है, ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंची। आज वे हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह दौरा भारत और लाइबेरिया के बीच सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 124 अंक गिरकर 77,843 जबकि निफ्टी 78 अंक घटकर 24,358 पर था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। उधर महिला सिंगल्स में कोको गोफ और ईगा स्वियातेक ने फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Lok Sabha has been adjourned sine die. The monsoon session, which began on the 20th of last month, concluded today after 19 sittings spread over 25 days. The House witnessed discussions on a wide range of legislative and national issues. Several important bills, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, the Tribunals Reforms Bill 2026,

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में हमारी सहयोगी आपके साथ जुड़ेगी, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें। विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

विशेष प्रसारण श्रेया मनाज यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, न्यूज़ ऑन एयर के आराधना चैनल डीटीएच और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। मैं आपकी उद्घोष का

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालताल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और इन खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी की जाएगी। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिन में लोकसभा की 19 बैठकें हुईं। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में बार बार व्यवधान डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है और उन पर लोकतांत्रिक तथा संसदीय परंपराओं का अनादर करने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में आकाशवाणी से बात करते हुए सुश्री

0: पटेल ने कहा कि विपक्ष का यह व्यवहार पूरे देश ने देखा है।
1: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी। इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है, हंगामा करना है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति इस समय उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति का संबोधन।
2: इन कलाओं में समुदाय की स्मृति और सामूहिक चेतना सहज रूप से व्यक्त होती है। यही कारण है कि लोक कला भारत की सांस्कृतिक पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। मैं स्वयं ऐसे परिवेश से आती हूँ जहाँ बहुत से गीत ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जाते, केवल गाए जाते हैं। बहुत सी ऐसी कथाएं होती है जो पुस्तकों में नहीं मिलेंगे, ये लोगों की स्मृति में ही रहती है। बहुत से नृत्य किसी मंच पर नहीं जन्म लेते हैं, ये उत्सवों और आम जीवन के बीच जन्म लेते हैं। देवियों और सज्जनों, भारतीय संस्कृति के अनेक गंभीर उद्यताओं ने कला की व्यापक परिधि की बात की है। संगीत और चित्रकला से लेकर बुनाई, पाक कला, अश्व कला तक अनेक दक्षता को कला के व्यापक संस्कार में स्थान मिला है।
0: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
3: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है, आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है, ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 45 अंक गिरकर 77,922 पर, जबकि निफ्टी 59 अंक की गिरावट के साथ 24,377 पर कारोबार कर रहा था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रेंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament have been adjourned sine die. The monsoon session, which began on the 20th of last month, concluded today after 19 sittings spread over 25 days. The House witnessed discussions on a wide range of legislative and national issues. Several important bills, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, the Tribunals Reforms Bill 2026, the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026, the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, and the Kerala Alteration of Name Bill 2026 were passed. However, the session also saw repeated disruptions over the issue of students' protests over the NEET paper leak, alleged police action against protesting students, and alleged anomalies in Ayodhya Ram Temple donation. Parliament has passed the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The bill aims to make India's mining sector more efficient, investment-friendly, and well-equipped to fulfill the country's growing demand for critical minerals.

0: विशेष प्रसारण श्रीयावना जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताएं आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मानसून इजलास के दौरान 12 बिल मंजूर किए जाने के साथ गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई है। लोकसभा में अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान सिर्फ 19% कामकाज हो पाया। पार्लियामेंट ने मुल्क के कानकनी के शोबे को ज्यादा मौसर बनाने की खातिर कानों और मादनियात के फरोग और उन्हें मुलजवित किए जाने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 115 फनकारों को संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप और अवार्ड्स अता किए हैं। अमरीका के मुख्तलिफ सूबों में 15 अगस्त को इंडिया डे के तौर पर मनाने का खसूसी तौर पर ऐलान किया है। कोलंबिया ने ताकतवर जलजले के बाद राहत कार्रवाइयों के लिए गैर मामूली इकदाम की खातिर इकतसादी इमरजेंसी का ऐलान किया है। और कैनेडियन ओपन टेनिस में मॉन्टेरियल में मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में दिफाई चैंपियन बेन शेल्टन का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी ब्रेंडन नाकाशिमा से होगा। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास गुज़श्ता माह के 20 तारीख को शुरू हुआ था और आज ये अख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान 25 दिनों में 19 नशिस्तें हुई। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: मानसून इजलास के दौरान लेजिस्लेटिव और कौमी मामलात पर बहस व मुबाहिसा हुआ। पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026, कौमी एजाजात की तोहीन से मुतालिक तरमीमी बिल, ट्राइब्यूनल्स इस्लाहात बिल, टैक्स और दीगर कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल, कौमी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तरमीमी बिल और केरला का नाम बदले जाने से मुतालिक बिल 2026 को मंजूरी दी गई। पार्लियामेंट ने गैर मुल्की अतियात को मुनजबित किए जाने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद गौर व खोज के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के

0: today. The Met Office has issued a red alert for extremely heavy rainfall in Bankura and West Medinipur. An orange alert for heavy to very heavy rainfall is in force in Purulia, Jhargram, East Medinipur and West Bardhaman. Other districts are under a yellow alert for scattered rainfall. Sandeep Bandashgupta, Akashvani News, Kolkata.
1: Heavy rain continues to batter Odisha under the influence of the depression over the Bay of Bengal, causing flood-like conditions in several northern districts. Rising water levels in Burabalanga, Jalaka and Kansabasa rivers have heightened concerns in Balesar and Mayurbhanj districts. The Indian Meteorological Department has forecast more rainfall over the next 24 hours. The IMD issued a red colour warning for very heavy rainfall to extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Gangetic, West Bengal and Odisha for the day. Heavy rainfall also expected over Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Konkan, Goa, Kerala, Mahe, Madhya Pradesh and parts of Northeast India till tomorrow. In Canadian Open Tennis, defending champion Ben Shelton will face Brandon Nakashima after both Americans advanced in straight sets to the final in Montreal this morning. The final will be played in Montreal tomorrow. American Brandon Nakashima defeated Spain's Rafael Jodar 7-6, 6-4 in the men's single semifinals at Montreal this morning to reach the Canadian Open final. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Both houses of parliament adjourned sine die with passage of 12 bills during monsoon session. Lok Sabha registers only 19% productivity amid opposition uproar. Parliament passes Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 to make mining sector more efficient. President Draupadi Murmu confers Sangeet Natak Academy fellowships and awards to over 100 artists. Several U.S. states issue special proclamations to commemorate August 15 as India Day for celebrating independence. Colombia declares an economic emergency to take measures for relief efforts following powerful earthquake. And in Canadian Open Tennis, defending champion Ben Shelton to take on compatriot Brandon Nakashima in men's singles final at Montreal. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुईं। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए

0: तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
1: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
3: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
1: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
4: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है।
5: भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट्स देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी, ये लोग नरेंद्र मोदी सरकार को सिखाने का जरूरत नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार 12 साल से देश के हित के लिए काम किया है।
1: चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के तरुण चुघ ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि कानून खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने विधेयक का विरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि इसका संघवाद और खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाईवी सुब्बे रेड्डी ने खनिज संसाधनों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया ना डीएमके के डॉ एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मानसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
6: ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
7: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं

0: कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
2: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पर एफआईआर करोगे? क्या न्याय है? राहुल गांधी क्या बोलते हो आप? क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकट्टा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
5: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त, जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो, हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्यों के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
1: गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
6: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
1: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का

आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते

0: न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रियेजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रेंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टियन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: विशेष प्रसारण श्यामाना जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर, न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल DTH और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोताओं, सावन महीने को बहुत महत्व माना जाता है क्योंकि ये भगवान शिव के प्रिय पवित्र महीना श्रावण में उनकी पूजा के लिए समर्पित है। ये समय आध्यात्मिक विकास, व्रत रखने और ईश्वर की कृपा पाने का होता है। आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व की बात ये कि भगवान शिव की कृपा इस महीने में अधिक मानी जाती है। जुड़े रहे आप हमारे साथ और सुनते रहे विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, पल पल के अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते हैं। फोन लाइन पर जुट चुके हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता गांधरबल से रहीम रिजवान साहब। जी रहीम साहब,
1: बालतल मुकिमा की अगर हम बात करेंगे तीर्थ यात्रा के हवाले से, तो सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को यहाँ के मौसम के बारे में जानकारी देते हैं और इसके साथ साथ क्या गतिविधि हो रही है उस बारे में भी उन्हें अहम सूचना साझा करते हैं।
0: जी
1: तो मौसम बिल्कुल आज खुशगवार है। बालतल मुकिमा से बालतल के पूरे क्षेत्र में धूप खिली हुई है और गर्मी भी शिद्दत की गर्मी महसूस हो रही है और पवित्र गुफा तक का मौसम जो है बिल्कुल खुशगवार है और बीच बीच में ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती हैं। तो गांधरबल जिले की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ भी मौसम बिल्कुल खुशगवार है। तो अब हम इस बात से बखूबी वाकफ हैं कि जो तीर्थ यात्रा है वो अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। अब
0: बिल्कुल
1: 28 अगस्त जो आने वाला है, यानी रक्षाबंधन के मौके पर जो श्रावण पूर्णिमा का अहम अवसर है, इस पे अब तीर्थ यात्रा जो है वो इख्ताम पजीर होगी।
0: जी
1: बाजाबता तौर इस दौरान देश के विभिन्न भागों से लाखों की संख्या में जो हमारे श्रद्धालु हैं वो घाटी आगमन हुए हैं और घाटी आगमन होने के बाद उन्हें कड़े सुरक्षा के बीच पवित्र गुफा की ओर रवाना कर दिया गया, जहाँ उन्हें माथा टेका शिवलिंगम के दर्शन से प्राप्त हुए। तो शिवलिंगम का दर्शन करके देश के विभिन्न भागों से आने वाले ये श्रद्धालु जो हैं वो वापस धीरे धीरे बालतल बेस कैंप पहुंचे, जहां उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच वापस जम्मू भगवती नगर बेस कैंप की तरफ रवाना कर दिया गया। इस वर्ष जो जिला प्रशासन गांधरबल है उनकी यही कोशिश रही और साथ ही जो सूबाई इंतजामिया के आला अफसरान और जिला इंतजामिया के अफसरान जो है वो बालतल का दौरा करते रहे और इंतजाम का जायजा भी लेते रहे। हालांकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा भी कई बार उन्होंने बालतल का दौरा किया, वहाँ जो
0: जी
1: ट्रांजिट कैंप थे वहाँ भी मौका दौरा किया और इंतजाम का जायजा लिया। इसके साथ साथ जो चिकित्सा विभाग ने, क्योंकि चिकित्सा विभाग जो है उनका अहम रोल बनता है यात्रा के दौरान, क्योंकि पहले तो इनको फिजिकल चेकअप बाजाबता तौर किया जाता है और फिजिकल चेकअप करने के बाद ही यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी जाती है। लिहाजा उन्होंने वहां भी मुआयना किया और 100 बेड वाला हॉस्पिटल जो बालतल में कायम किया गया या बालतल से पवित्र गुफा तक 3 और 20 बड़े हॉस्पिटल कायम किए गए थे और इसके साथ साथ जगह जगह चिकित्सा केंद्र भी कायम किए गए, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अलावा दीगर अद्वियात वगैरह जो है व्यवस्थाएं जो है वो मैसर रखी गई है यात्रियों के लिए। तो उन्होंने उसका भी जायजा लिया। इसके साथ साथ जो लंगर वाले यहां पे कायम किए गए थे पहले ही जो देश के विभिन्न भागों से यहाँ आए उनके सेवादार, तो उनकी सफाई सुथराई के बारे में भी जानकारी वो लेते रहे और सुबह इंतजाम के सिविल और पुलिस के आला अफसर भी यहाँ अक्सर मौका करते रहे और जो इंतजाम है का जायजा लेते रहे। इस तरह इस वर्ष जो व्यवस्थाएं की गई थी वो बिल्कुल बेहतरीन व्यवस्थाएं थी, जिसको लेकर यात्री जो हैं वो संतोष व्यक्त कर रहे हैं। तो उनका यही मानना है कि इस वर्ष जो व्यवस्थाएं यहाँ रखी गई है बालतल के मुख्य मार्ग से, लिहाजा इसी वजह से जो यात्री देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने अच्छी तरीके से यात्रा की। तो जिन श्रद्धालुओं के साथ हमने बात की तो उन्होंने बार बार आकाशवाणी को बताया कि यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का भाईचारा, वातावरण सब कुछ और यहाँ की सुंदरता देखकर उन्हें दिल मानता ही नहीं है कि वो वापस जाएं, बल्कि यहाँ ही रुकने को दिल करता है। और इसके साथ साथ उनके साथ जो व्यवहार किया गया है वो बिल्कुल बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर की हमारी सदियों से चली आई रिवायत है उसको बरकरार रखने के लिए यहाँ का हर एक मकामी मुसलमान हो या हिंदू भी हो, तो वो भी चाहता है, या सिख हो, क्योंकि वहाँ हर धर्म के लोग पाए जाते हैं यात्रा के दौरान, हर धर्म के लोग अपना योगदान जो है वो देते रहते हैं और कोशिश यही करते हैं कि मुल्क या विदेश भी ऐसी मैसेज आए कि कश्मीरी लोगों का व्यवहार कैसा है, वातावरण कैसा।

0: है, किस तरह वो मेहमानों के साथ पेश आते हैं। तो हर वक्त हमारी कोशिश यही रहती है कि जो यहाँ मेहमान आए, चाहे वो पर्यटक हो, यात्री हो या और कोई हो, तो उनके साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा रहना चाहिए, ताकि हमारा हमारे जो ये इकोनॉमी है, बिजनेस है या टूरिज्म है, उस पर अच्छे असरात भी पड़ेंगे, जिससे यहाँ के मकामी लोगों को एक तो रोजगार मिल सकता है,
1: जी
0: और दूसरा ये भी कि यहाँ की अच्छी खबर जो है, बेहतरीन मैसेज जो है, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेश में भी जाएगी, जिससे यहाँ के लोगों का जो पुराना एतमाद है, भरोसा है, सिंपल सिटी है, सादगी है, वो बरकरार रहे, और हमारा भाईचारा जो है, खासकर उस वातावरण को हम खोना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो हमारे असलाफों ने हमें विरसे में दिया है। तो हमारा बिल्कुल यही कोशिश रही प्रशासन के द्वारा, इसीलिए सिक्योरिटी के भी कड़े प्रबंध किए गए। तो यात्रा के दौरान अभी तक कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया जिस दौरान हमारे श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। हालांकि
1: जी
0: वर्षा के दौरान इस बार जो है, मौसम विभाग के अनुसार बार बार जो यहाँ पे वर्षा हो रही थी या मौसम खराब रहा, लेकिन खराब रहने के दौरान मौसम जो है वो खराब भी रहा, लेकिन इस दौरान भी ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटी जिससे यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इस तरह इस वर्ष यात्री जो है देश के विभिन्न भागों से लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, वो सुरक्षित, उन्होंने गुफा जाकर माथा टेका, शिवलिंगम के दर्शन करके सुरक्षित वापस पहुंचे। जी
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद आपका।

0: विशेष प्रसारण श्रेया मनाजी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, पल पल के अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते हैं। फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता एस तारिक साहब अनंतनाग से। जी तारिक साहब,
1: बहुत शुक्रिया फजमान। जो अभी 57 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के अब महज 15 दिन शेष रह गए। फिलहाल बदलते मौसमी हालात के तनासुब से यात्रा की गहमा गहमी दोनों मार्ग बालतल और पहलगाम से मुअत्तल रखी गई है। अलबत्ता अब इस पवित्र यात्रा से मंसूब एक अहम रस्म छठी मुबारक की तैयारियां जोरों पे है, जिसकी गहमा गहमी श्रीनगर से पहलगाम तक जारी है। तो श्रीनगर मैं पहले बशरू करूंगा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के सिलसिले में रिवायती छठी मुबारक से मुतलिक अहम मजहबी रसूमात और प्रोग्रामों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक शिव और शक्ति के प्रतीक मुकद्दस छठी मुबारक के सिलसिले में मुख्तलिफ मंदिरों में खुसूसी पूजा और मजहबी रसूमात का एहतमाम किया गया है। शेड्यूल के मुताबिक कल 12 यानी गुजश्ता दिन 12 अगस्त को शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर में दर्शन की प्रक्रिया हुई, जबकि 13 अगस्त यानी आज शारिका भवानी मंदिर में खुसूसी पूजा अदा की गई। इस तरह कल परसों 15 अगस्त को दशनामी अकारा श्रीनगर में छठी स्थापना की रस्म अंजाम भी होगी, जबकि 17 अगस्त को नाग पंचमी के मौके पर छठी पूजन होगी। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए रिवायती जो मजहबी सफर के तहत 22 और 23 को छठी मुबारक का पहला तो पैरगाम पहुंचेगा।

0: शंकर मंदिर में पहले भूमि पूजन वगैरह होगी और इसी दिन वो वहीं पे पहलगाम में ही अपनी रात्रि गुजारेंगे, जबकि 24 अगस्त को चंद्रवारी में रात गुजारी जाएगी। 25 अगस्त को शिशनाग का रात का क्या मुकर्र है, जिनों के मुताबिक 26 और 27 अगस्त को छड़ी मुबारक का पंचतरनी में रात का क्याम होगा, जिसके बाद 28 अगस्त को मुकद्दस गुफा में दर्शन और खुदसी मजहबी रसूमात के साथ श्री अमरनाथ की यात्रा 2024 का रिवायती काम श्रावण पूर्णिमा के दिन होगा। अभी मौसम की बात करें तो श्री अमरनाथ की यात्रा के पहलगाम का पवित्र गुफा रिवायती मार्ग पर आज मौसमी अबरादों और सर्द रहने की जो अमकान कहा गया था, जो मौसमियात की तरफ से आ गया था, जबकि बालाई इलाकों में वक्त वक्त से हल्की बारिश या बूंदाबांदी मुतवक्का थी। गुफा के करीब नमी की सतह 96% के दरमियान रही। मौसम की पेशगोई के मुताबिक अमरनाथ गुफा के इलाके में दर्जे हरारत तकरीबन 10 से 15 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर 20 डिग्री तक पहुंच सकता था। ये जो मौसम विभाग ने जो हमें पेशगोई की थी, जिसके अनुसार आज मौसम सर्द रहने का इम्कान था। तमाम अभी मैं इस इलाके में बिल्कुल मौजूद हूँ, यहाँ मौसम बिल्कुल खुशगवार है और धूप निकल आई है, बल्कि जिला के बाकी इलाकों में गर्मी की शिदत भी बढ़ गई है। पहलगाम और यात्रा मार्ग के दीगर इलाकों में आसमान ज्यादातर अबरालू रहने की 7 दिन के अवकात में दर्जे हरारत 23 डिग्री से ज्यादा दर्ज की गई है। हालिया बारिशों और जारी मौसमी हालात के बायस की गई मकामात पर रास्ते नम और फिसलन ज्यादा हो सकती थी, ऐसा भी कहा गया था। जो ट्रैक को पहुंचने वाले नुकसान और हालिया शदीद बारिशों के पेश नजर श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों मार्ग और बालतर रास्तों से आर्जी तौर पे मुअत्तल है। मुतलका इदारों की जानिब से यात्रा मार्ग की बहाली और मरम्मती का काम जारी है, तो प्रशासन के द्वारा जो यात्रियों को मशवरा दिया गया है कि यात्रा के बाकायदा बहाली तक ट्रैक पर जाने या पैदल सफर शुरू करने की कोशिश ना करें और सरकारी हिदायत पे निर्देश पे अमल करें। जी
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए,
0: बहुत शुक्रिया।

0: विशेष प्रसारण श्रेया अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, पल पल के अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते हैं। फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मोहम्मद तस्कीन साहब राम से। जी तस्कीन साहब
1: जी, शुक्रिया। आज हाईवे का ही पहले कहेंगे कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का जो निजाम है वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहा है। आज सुबह से धूप निकली हुई है पूरे रामबन बानहाल उधमपुर सेक्टर में। अलबत्ता अब करीबन दोपहर के बाद से बादल भी हल्के हल्के आना शुरू हुए और हवाएं चल रही है, तो मजमूई तौर पर शाहराह पर ट्रैफिक की जो नकलो हरकत है वो बगैर किसी खलल के जारी रही। और जैसा कि तमाम श्रोताओं को मालूम है कि आज श्री अमरनाथ यात्रा पांचवें दिन भी मौत

0: रही जिसमें जो वजूहत बताई गई हैं वो खराब मौसमी सूरत हाल जो पीछे बनी हुई थी लगातार, तो उस वजह से जो ट्रैक्स को जो बालतल और पहलगाम का ट्रैक है उसको जो नुकसान पहुंचा था उसकी मरम्मत के लिए जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को मतलब कहा गया था उसकी मरम्मत के लिए, तो उस वजह से जो यात्रा सस्पेंड है मौतल है वो अभी भी मौतल है और अभी इसके खत्म करने के बारे में कोई सरकारी ऐलान सामने नहीं आया है। इस दौरान जो लंगर वगैरह यहाँ रामबन बानहाल सेक्टर में थे लगे हुए करीबन 3 दर्जन के करीब लंगर, तो उसमें बहुत सारे लंगरों ने अपना जो वाइंड अप किया है वो वापस भी निकलना शुरू हो गए हैं। अलबत्ता कुछ लंगर अभी भी यहाँ पर मौजूद है और उन्हें उम्मीद है कि हो सकता कि यात्रा को रिज्यूम किया जाए या मजीद यात्री जो पवित्र गुफा की तरफ जाए, क्योंकि 28 तारीख को इसका आखिरी जो मजहबी रसूमात वहां अदा की जानी है जब छड़ी मुबारक गुफा तक पहुंचेगी, श्री अमरनाथ की गुफा तक पहुंचेगी, तो उसके लिए उनका मतलब अंदाजा है कि और भी जो साधु संत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से छड़ी मुबारक में शिरकत के लिए आते हैं उस सफर उस मुबारक सफर के लिए पवित्र गुफा की तरफ जाते हैं, तो उसके लिए अभी उनको उम्मीद है कि मजीद जो इस यात्री है या साधु संत है वो कश्मीर आएंगे। फिलहाल जो यात्रा आज 5वें दिन से सस्पेंड है मौतल है और जो कुछ लंगर जो बचे हुए हैं जो यहाँ पर रामबंद और रामबंद के चंद्रकूट इलाके में और बानहाल के लांबर ग्राउंड में वो मुसलसल कुछ लंगर रखे गए हैं ताकि अगर कोई श्रद्धालु आता है कोई अमरनाथ यात्री आते हैं तो उनकी खिदमत की जाए। जी
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: जी बहुत शुक्रिया।
1: श्रोताओं ये जुड़ चुके थे हमारे साथ हमारे संवाददाता तस्कीन साहब रामबन से।

विशेष प्रसारण श्रेया मनाजी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपके साथ छड़ी मुबारक का कार्यक्रम साझा करना चाहेंगे। जैसा कि कल 12 अगस्त को छड़ी मुबारक को दाश नामी अखाड़ा श्रीनगर से पुराने और प्रसिद्ध शंकराचार्य मंदिर ले जाया गया, जहाँ छड़ी मुबारक दर्शन हुए, वहीं 13 अगस्त यानी आज छड़ी मुबारक को शारिका भवानी मंदिर ले जाया जाएगा, जहां विशेष पूजा की जाएगी। 15 अगस्त दशनामी अखाड़ा श्रीनगर के अंदर स्थित श्री अमरेश्वर मंदिर में छड़ी स्थापना की धार्मिक रस्में की जाएंगी। 17 अगस्त नाग पंचमी के शुभ मौके पर दशनामी अखाड़े में पारंपरिक छड़ी पूजन होगा। पूजा के बाद छड़ी मुबारक भक्तों के दर्शन के लिए उपलब्ध रहेगी। इसके आगे का छड़ी मुबारक का कार्यक्रम आपके साथ कुछ ही समय बाद साझा करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और सुनते रहे विशेष प्रसारण श्रेया मनाजी यात्रा 2026।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, कुछ ही समय पहले आपके साथ छड़ी मुबारक का कार्यक्रम साझा किया। अब आगे बताना चाहेंगे कि 22 अगस्त छड़ी मुबारक की मुख्य यात्रा शुरू होगी। 22 और 23 अगस्त को पहलगाम में विश्राम होगा। 24 अगस्त रात का विश्राम चंदनवाड़ी में होगा। 25 अगस्त रात का विश्राम शेषनाग में होगा। 26 और 27 अगस्त रात का विश्राम पंचतरणी में होगा। 28 अगस्त श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेगी। यहां अंतिम पूजन और दर्शन होंगे, जो 2026 की अमरनाथ यात्रा के औपचारिक समापन को दर्शाता है। जुड़े रहें आप हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तमाम यात्रियों से निवेदन है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर के द्वारा। हमारे हेल्पलाइन नंबर है 9596990954, 9596990954। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर भी नोट कर लीजिए, जम्मू के लिए है 1800180071 98, 1800180071 98। श्रीनगर के

है 1800 1807199, 1800 1807199। और ईमेल आईडी भी हमारी नोट कर लीजिए, akashvanibaltal@gmail.com, akashvanibaltal@gmail। जुड़े रहे आप हमारे साथ इस विशेष प्रसारण के संग।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपके साथ छड़ी मुबारक का कार्यक्रम साझा करना चाहेंगे। जैसा कि कल 12 अगस्त को छड़ी मुबारक को दाशनामी अखाड़ा श्रीनगर से पुराने और प्रसिद्ध शंकराचार्य मंदिर ले जाया गया, जहां छड़ी मुबारक दर्शन हुए। 13 अगस्त यानी आज छड़ी मुबारक को शरीका भवानी मंदिर ले जाया जाएगा, जहां विशेष पूजा की जाएगी। 15 अगस्त दशनामी अखाड़ा श्रीनगर के अंदर स्थित श्री अमरेश्वर मंदिर में छड़ी स्थापना की धार्मिक रस्में की जाएगी। 17 अगस्त नाग पंचमी को शुभ मौके पर दशनामी अखाड़ा में पारंपरिक छड़ी पूजन होगा। पूजा के बाद छड़ी मुबारक भक्तों के दर्शन के लिए उपलब्ध रहेगी। 22 अगस्त छड़ी मुबारक की मुख्य यात्रा शुरू होगी। 22 और 23 अगस्त को पहलगाम में रात का विश्राम होगा। 24 अगस्त रात का विश्राम चंदनवाड़ी में होगा। 25 अगस्त रात का विश्राम शेषनाग में होगा। 26 और 27 अगस्त रात का विश्राम पंचतरणी में होगा। 28 अगस्त श्रवण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेगी। यहां अंतिम पूजन और दर्शन होंगे, जो 2026 की अमरनाथ यात्रा के औपचारिक समापन को दर्शाता है। जुड़े रहे आप हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

सभी भक्तजन भोले बाबा के चरणों में बैठकर भोले बाबा की पवित्र आरती का दर्शन कर रहे हैं, आरती श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, प्रीति के साथ, आनंद मन से भोले बाबा के भजन का ध्यान करेंगे।

0: बोलिए शंकर भगवान के
1: जय,
0: धर्म के
1: जाओ,
0: अधर्म का
1: नाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भाव हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जाओ,
0: मात पिता की
1: जाओ,
0: गुरु जनों की
1: जाओ,
0: सभी संतों की
1: जाओ,
0: सभी भक्तों की
1: जाओ,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जाओ,
0: आज के आनंद की
1: जाओ,
0: भारत माता की
1: जाओ,
0: शंकर भगवान की
1: जाओ,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जाओ,
0: शंकर भगवान के गणों की
1: जाओ,
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जाओ,
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जाओ,
0: बाबा बर्फानी की
1: जाओ,
0: नमः पार्वती।

0: 住。
1: श्रोता बाल तल में रिकॉर्ड की गई आरती समाप्त कर रहे थे। इसी के साथ हमारी आज की सभा समाप्त होती है। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बाल तल में हमारे साथी इंजीनियर्स थे मंजूर अहमद फारूक अहमद और मोहम्मद सलीम। मैं आपकी साथी उद्घोषिका पजमान फेरोज़, इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक वानी और श्री गुलाम रसूल आखून। यात्रा का विशेष प्रसारण लिए हम आपकी सेवा में कल प्रातः 6:53 फिर उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि, जय हिंद।

इधर राम लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। जनकपुर की स्त्रियां उन्हें अपलक निहारते हुए उनके सौंदर्य की आपस में चर्चा इस तरह से कर रही हैं।

गौरी पूजन के लिए सीता सखियों के साथ जाती हैं और फूलमाला चढ़ाते हुए माता के चरणों को धोती हैं, पोछती हैं, साथ ही शीश नवाते हुए अपनी बात कहती हैं।

प्रस्तुत है धनुष यज्ञ का कार्यक्रम, जहां बड़े बड़े योद्धा, राजा, सूर्यवीर, बाणासुर जैसे योद्धा धनुष को तोड़ने के लिए अपने अपने बल का प्रयोग करते हैं। उसी दरबार में श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ उपस्थित हैं। बारी बारी से सूर्यवीरों के प्रयास करने पर भी धनुष नहीं उठा। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने गुरु का चरण छूते हुए प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। धनुष दो टूक हो जाता है। धनुष टूटने की आवाज सुनते ही परशुराम जी की तपस्या भंग होती है और उठकर जनक की सभा में पहुंचते हैं। परशुराम जी को गुस्से में देख भगवान राम जी हाथ जोड़ अपनी सारी बातें कुछ इस प्रकार बताते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
1: आज प्रस्तुत है इस विशेष नाटक की छठी कड़ी।

0: குந்தேந்தீவர சுந்தராவதி பலௌ விஜயான தாமாவுபௌ சோபாட்யௌ வரதன்வினௌ ஸ்ருதினுதௌ கோவிப்ரபிருந்த பிரியௌ மாயா மானுஷ ரூபிணௌ ரகுவரௌ சத்தர்ம வரமௌ ஹிதௌ சீதான்வேஷண தத்பரௌ பதிகதௌ பக்தி பிரதௌ தௌ ஹினா। सीता जी की खोज में आगे बढ़ते हुए श्री राम जी ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे। वहां सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। महापराक्रमी राम और लक्ष्मण को आते देखकर सुग्रीव पहले तो चिंतित हुए कि कहीं बाली ने ही तो इन्हें नहीं भेज दिया है। फिर विचार कर हनुमान जी को सारी स्थिति की जानकारी के लिए भेजा। हनुमान जी ब्रह्मचारी का रूप धारण कर श्री राम जी के निकट पहुंचे।
1: भद्र पुरुषों की सेवा में मेरा प्रणाम।
2: प्रणाम।
1: कुतुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बनबीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेत बिचरहु बन स्वामी। कहीं आप ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीन देवताओं में से तो नहीं है, या फिर आप नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनोज अवतार।
2: वीरवर कोसलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुख मारी सुहाई। पंचवटी से किसी राक्षस ने सीता का अपहरण कर लिया है। हम दोनों उन्हें खोज रहे हैं, बस यही हमारी गाथा है। अब आप भी तो अपना परिचय दीजिए।
1: स्वामी, मेरा आपसे परिचय पूछना तो न्याय संगत था। मैंने वर्षों बाद आपको देखा है, वो भी तपस्वी के वेश में। अपनी बानरी बुद्धि के अनुसार मैं आपको पहचान नहीं सका, परंतु आप तो सर्वज्ञ हैं। फिर तुम पूछो कस नर की नाई, तब माया बस फिरहु भुलाना ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान।
2: हनुमान हनुमान,
1: मानता हूं प्रभु मैं अवगुणों की खान हूं, किंतु आप मुझको भूल जाए। स्वामी, मैं मानता हूं हर जीव आपकी माया से मोहित है, आपकी कृपा से ही भव सागर से पार हो सकता है। फिर प्रभु मैं तो भजन उपाय कुछ भी नहीं जानता। जिस तरह पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, उसी तरह सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है।
2: हनुमान हनुमान उठो, मेरे हृदय से लग जाओ।
3: तात, आपके नेत्रों में अश्रुकण।
2: यह अश्रुकण नहीं लक्ष्मण, यह हनुमान से मिलने का उल्लास है। अपने मन में ग्लानि मत लाओ कभी, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो।
3: सब आपको समदर्शी कहते हैं, आपके लिए ना कोई प्रिय है ना प्रिय है।
2: पर मुझे सेवक प्रिय है, क्योंकि मुझको छोड़कर उनका कोई और सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत।
1: नाथ, सैल पर कपिपत रही सो सुग्रीव दास तब आई। तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए दीन जानी तेहि अभय करीजिए। सो सीता कर खोज करा इह जहां ता मरकट कोट पठा इह।
0: इस प्रकार हनुमान ने श्री राम जी को सुग्रीव की कथा समझाई, फिर दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी

0: और लक्ष्मण को इस प्रकार हनुमान के साथ आते देखा तो अपने जन्म को धन्य समझा। मन में सोचने लगा, हे विधाता, क्या ये मुझसे स्नेह करेंगे? उनके आते ही सुग्रीव ने उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। राम ने उन्हें कंठ से लगा लिया। तब हनुमान ने उन दोनों को एक दूसरे की गाथा सुनाकर अग्नि की साक्षी कर उन दोनों में मित्रता करवाई। कीनी प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाखा।
1: वानरराज, मेरे भाई महापराक्रमी राम हैं। हम दोनों अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। पिता की आज्ञा से वन में आए हैं। राम के शौर्य से संपूर्ण वन राक्षस विहीन हो चुका है। खर, दूषण, त्रिशरा और कबंध जैसे महाबली राक्षस राम के हाथों मारे जा चुके हैं। इस पर खींचकर राक्षस राज रावण ने सीता जी का अपहरण किया है। हम उन्हें ही खोजते हुए यहां तक पहुंचे हैं।
2: देव, आप लोग चिंता ना करें, सीता जी आपको मिल जाएंगी। एक बार मैं यहां बैठा हुआ अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहा था। गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हमें ही देख दीने पट डारी।
3: वो वस्त्र मुझे दिखाओ सुग्रीव।
2: अभी लो प्रभु, ये लीजिए प्रभु।
3: वही हैं, सीता के ही वस्त्र हैं।
2: प्रभु, आप चिंता न करें, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। मैं वो हर संभव उपाय करूंगा जिससे सीता जी आपको मिल जाएं।
3: मुझे तुम पर विश्वास है सुग्रीव। अब एक बात बताओ सखा, तुम इस प्रकार वन में क्यों रह रहे हो?
2: स्वामी, मैं और बाली दो भाई हैं। कभी हम दोनों में ऐसा स्नेह था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार की गाथा है, मैं दानव का महाबली पुत्र मायावी हमारे नगर में आया और आधी रात के समय ऊंचे स्वर में बाली को ललकारने लगा। बाली शत्रु की ललकार कैसे सहन कर सकता था? बाली हुंकार कर उसके पीछे भागा। मैं भी ये सब देख भाई के साथ साथ चला।
4: ठहर ठहर, ओ दुष्ट मायावी ठहर, मैं तुझे तेरी ललकार का प्रत्युत्तर दूंगा।
3: सुग्रीव।
2: हाँ भैया।
4: तुम देख रहे हो, मायावी इस पर्वत की गुफा में घुस गया है। तुम एक पखवाड़े तक यही मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं 15 दिन तक लौट कर नहीं आ सका तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो चुकी है।
2: भैया, ये आप क्या कह रहे हैं?
4: मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं गुफा भी जाकर इससे युद्ध करूंगा।
2: प्रभु, मैं वहां 1 मास तक रहा, तब एक दिन मैंने देखा गुफा से खून की बड़ी धारा बह निकली है। मायावी ने बाली को मार दिया है और मुझको आकर मार देगा, क्योंकि मैं बाली से अधिक बली नहीं हूं। ये सोच मैं गुफा के द्वार पर विशाल शिलाखंड लगाकर लौट आया। मंत्रियों ने राजधानी को बिना स्वामी के देखा। मेरी इच्छा ना होने पर भी उन्होंने मुझे राजा बना दिया।
3: चुप क्यों हो गए सुग्रीव, बोलते क्यों नहीं?
2: कुछ दिनों बाद बाली शत्रु को मारकर घर लौटा। आश्चर्य तो ये था प्रभु कि उसके हृदय में मेरे प्रत्येक शत्रु के समान रोष था। रिपु सम मोही मारे से अति भारी, हरि लीने से सर्वसु अरिनारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरों बिहाला। यहां साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही।
5: सुनो सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उपरे ही प्राण। मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है। सिद्धांत कहता है, जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरिसम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हटी करत मिताई। अत सका सुग्रीव, मेरे बल पर

0: अब तुम अपनी चिंता छोड़ दो, मैं हर प्रकार तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा।
1: देव, बाली महाबली और अत्यंत रणधीर है। देखिए, वो दुंदुभि राक्षस की अस्थियों का समूह है, ताड़ के वृक्ष हैं। ऐसी बात प्रचलित है कि जो इनका विनाश कर सकेगा उसी के द्वारा बालीवध होगा।
0: तो लो, मैं इन्हें एक ही बाण से नष्ट किए देता हूं।
1: आश्चर्य, एक ही बाण ने यह चमत्कार कर दिखाया। मुझको विश्वास हो गया कि आप निश्चित वाली का वध करेंगे।
0: निश्चिंत रहो सुग्रीव, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा।
1: बाली तो मेरा उपकारी है, जिसकी कृपा से दुखों का नाश करने वाले आप मुझे मिले। नहीं प्रभु, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। सुख संपत्ति परिवार और अहम का त्याग कर मैं आपकी सेवा करूंगा। मुझे वरदान दीजिए कि मैं सब कुछ त्याग कर दिन रात आपका भजन करूं।
0: ऐसा ही होगा, मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं होते। बाली मारा जाएगा और तुम किष्किंधापति बनोगे। उठो सखा, यह वैराग्य की वाणी छोड़ो और बाली से युद्ध करने को तत्पर हो जाओ। आओ मेरे साथ।
2: बाली, बाली, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूं। शक्ति है तो आकर मुझसे युद्ध करो।
3: आज इस सुग्रीव को क्या हो गया? कहीं भांग तो नहीं खा गया?
2: ठहर, मैं अभी तेरी खबर लेता हूं।
4: स्वामी, स्वामी, पहले मेरी एक बात सुनिए।
3: क्या है?
4: ये सुग्रीव नहीं गरज रहा, ये राम और लक्ष्मण की शक्ति गरज रही है। सुनो पति, जिन्हें मिले हो सुग्रीवा, ते तो बंधु तेज बल सीमा, कोसले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा।
3: भीरू प्रिय, राम समदर्शी हैं, यदि वे मुझे मारेंगे तब भी मुझको परम पद प्राप्त होगा।
5: दुहाई है प्रभु, आपकी दुहाई है।
1: मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं, मेरा काल है।
0: मैं भी विवश था सुग्रीव, तुम दोनों भाई समान रूप के हो। मैं भ्रम में पड़ गया, सोचा कहीं बाली के धोखे में तुम ही ना मारे जाओ। लो, ये पुष्पमाला धारण करो ताकि मुझको तुम्हारी पहचान रहे। जाओ, निश्चिंत होकर युद्ध करो।
6: तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, इस पर भी आपने पेड़ की ओट में छिपकर व्याध की भांति मुझे मारा। मैं पहले सुग्रीव प्यारा, अब कुन कमरनाथ मैं मारा।
0: अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम एचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बंधे कछु पाप न हुई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिकावन करसी न काना। मम भुजबल आश्रित तेही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी।
6: स्वामी, स्वामी, आपसे मैं चतुराई में नहीं जीत सकता। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति पाकर भी मैं पापी ही रहा।
0: सुनो बाली, मैं तुम्हारी देह को अचल करता हूं, तुम अपने प्राणों की रक्षा करो।
6: नहीं नहीं, कृपा निधान रही मुनिगण, जन्म जन्मांतर यत्न करने पर भी जिस गति को प्राप्त नहीं होते, वो मुझको सहज में ही मिल गई है। चाहने पर भी अंत समय लोग राम नाम नहीं ले पाते, और मेरे सम्मुख तो साकार राम खड़े हैं। ऐसा संयोग क्या फिर आएगा।

0: नयन गोचर जासुकुन नित नेति कंश्रुति गावही जित पवन मन गो निरस करी मुन ध्यान कबूक पावही मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहु राखु शरीर ही अस कबन सट हटि काटि सुर तरु बारी करही बबूरही अब नाथ करि करुणा विलो कहु देहु जो वर मांगहु जहि जोनि जन्मु कर्म बस तह राम पद अनुराग हु प्रभु देवताओं और मनुष्यों के नाथ ये मेरा पुत्र अंगद है बल पराक्रम और विनय में मेरे ही समान है इसकी बाह पकड़ कर आप इसे अपना दास बनाइए इसे आश्रय दीजिए
1: तथास्तु
2: स्वामी मैं तो आपको पहले ही समझा रही थी पर आपने मेरी बात न मानी
3: पिता तुम्हारे बिना अब हमारा सहारा कौन बनेगा
1: देवी तारा धैर्य से काम लो पृथ्वी जल अग्नि आकाश और पवन इन्हीं पांच तत्वों से ये अथम शरीर रचा गया है वो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है जीव तो नित्य है फिर तुम किसके लिए रो रही हो
2: प्रभु मुझको अपनी परम भक्ति का वरदान दो
1: निश्चित देवी सखा सुग्रीव बाली तुम्हारे अग्रस्त है विधिवत इनका दाह संस्कार करो और लक्ष्मण तत्पश्चात तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव को राजपद और अंगद को युवराज पद से सुशोभित करो
4: रघुपति की प्रेरणा से सब लोग उन्हें प्रणाम करके विदा हुए सभी कार्य विधिवत हुए तब लक्ष्मण जी ने सब नगरवासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुलाकर उनके सम्मुख सुग्रीव को राज्य दिया और अंगद को युवराज बनाया अब ग्रीष्म बीतकर वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी वर्षा काल बिताने के लिए श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके

0: ताज,
1: आज आपका मन कुछ उद्विग्न लग रहा है।
2: प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य और उसके गूढ़ रहस्य में खो गया है मन। इस वर्षा ऋतु को देखकर अनेक विचार मेरे मन में उठ रहे हैं।
1: मैं आपकी व्यथा को समझता हूँ तात। हमारे वनवास काल में जितनी बार वर्षा ऋतु आई है, जानकी जी साथ रही हैं। इस बार उनकी अनुपस्थिति आपको व्याकुल किए हुए है।
2: तुम ठीक कहते हो तात। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन बोरा।
3: उधर देखो लक्ष्मण, जैसे विद्वान विद्या पाकर नम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार बादल पृथ्वी के पास आकर बरस रहे हैं। पर्वत बूंदों के आघात को इस प्रकार सह रहे हैं जैसे संत लोग दुष्टों के वचनों को सहते हैं। छोटी छोटी नदियां किनारे तोड़कर इतराती हुई चल रही हैं जैसे क्षुद्र लोग थोड़ा सा धन पाते ही मर्यादा तोड़कर प्राण लेते हैं।

0: लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई और परम सुहावनी शरद ऋतु आ गई है, किंतु
1: किंतु क्या तात, आप चुप क्यों हो गए?
0: लक्ष्मण, अभी तक सीता के विषय में कोई समाचार नहीं मिला। एक बार कैसे भी उसका समाचार प्राप्त हो जाए तो राक्षस राज्य क्या काल को भी जीतकर मैं उसे ला सकता हूं। यदि वह कहीं भी जीवित हुई तो मैं इसे यत्न करके अवश्य लाऊंगा।
1: तात,
0: सुग्रीव हूं सुधि मोरी बिसारी, पावा राज को सुपुर नारी, जही सायक मारा मैं बाली, तही सरहतों मूड कह काली।
1: बहुत दिनों बाद आज धनुष पर पार चढ़ाने का अवसर मिला है। मर्यादा पुरुषोत्तम, आप शुभ ना हो, मैं अभी किष्किंधा जाकर सुग्रीव की बुद्धि ठिकाने लगाता हूं।
0: वहां जाकर कोई अनिष्ट न कर देना लक्ष्मण, केवल भय दिखाकर सखा सुग्रीव को यहां ले आओ।
2: जिनकी कृपा से मद और मोह छूटते हैं, ऐसे श्री राम जी को कभी स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है? ये क्रोध तो केवल लीला मात्र है। ज्ञानी ऋषि जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति लगा रखी है, वे ही इस लीला के रहस्य को जानते हैं। इधर किष्कंधा में हनुमान मन ही मन सोचने लगे, श्री राम जी के कार्य को सुग्रीव तो भूल ही गए हैं। उन्होंने जाकर सुग्रीव को स्मरण कराया। सुग्रीव ने कहा, वास्तव में ही हनुमान, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। विषय वासना ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया है। ऐसा करो पवन पुत्र, जहां जहां वानरों के समूह रहते हैं वहां वहां दूतों को शीघ्र भेजो और कहलवा दो कि 15 दिनों में जो नहीं आएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जह तह कपि धाए।
1: कहां है सुग्रीव, उन्हें शीघ्र बुलाओ, नहीं तो मैं पूरे नगर को जलाकर राख कर दूंगा।
3: मैं युवराज अंगद प्रणाम करता हूं देव, हम लोगों को अभिदान दें, हमारे अपराध को क्षमा करें।
1: डरो मत अंगद।
4: हनुमान, हनुमान।
5: आज्ञा महाराज।
4: देवी तारा को साथ ले जाकर लक्ष्मण जी को समझाओ, उनके क्रोध को शांत करो।
6: हम उन्हें अभिभवन में लेकर आते हैं महाराज। मैं प्रणाम करती हूँ भगवान।
5: मेरा भी प्रणाम स्वीकारें देव, हमें आशीष दें।
1: मेरा आशीष सदैव आप लोगों के साथ है।
6: आइए प्रभु, राजभवन को अपने चरणों से पवित्र कीजिए।
5: मुझको अपनी भूल का पश्चाताप है देव।
1: उठो वानरराज, मेरे कंठ से लग जाओ।
5: हे नाथ, विषय के समान कोई मत नहीं है, मैं तो साधारण जीव हूं, जबकि ऋषियों तक के मन में ये मोह उत्पन्न कर देता है।
7: लक्ष्मण जी, हमने सब दिशाओं में वानर यूथ बुलाने के लिए दूत भेजे हैं।
1: ठीक है, आओ

0: अब श्री राम जी के पास चले।
1: हर के चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथ। श्री राम सुग्रीव आदि के बीच जानकी जी की खोज के लिए बातें होने लगी। यही विधि होत बत कही आए बान रजूत, नाना बरन सकल दिसि देखिए कीस बरूत। तब सुग्रीव की आज्ञा पाकर सब बानर योद्धा जहां तहां खड़े हो गए। सुग्रीव ने उन्हें सारी बातें समझाते हुए कहा,
2: शांत हो जाओ, सब शांत होकर सुनो। वानर वीरो, सीता जी की खोज के लिए आपको यहां बुलाया गया है। यह भगवान राम का कार्य है। मेरा अनुरोध है आप सब लोग सीता जी को जाकर खोजो। इसके लिए एक मास की अवधि है। जो बिना सुध लिए अवधि समाप्त करके लौटेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा।
3: भगवान राम की जय! भगवान राम की जय! बाना राम सुग्रीव की जय! बाना राम सुग्रीव की जय! बाना राम सुग्रीव की जय!
2: सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुध पूछे सब काहू, मन क्रम वचन सो जतन विचारहू, रामचंद्र कर काज सवार।
4: यह मेरी मुद्रिका है हनुमान, यह सीता को देना, उन्हें सब प्रकार से समझाना, मेरे विरह प्रेम शक्ति सबके विषय में उन्हें बताना और शीघ्र लौटना।
1: हनुमत जन्म धन्य करी जाना, चलेउ हृदय धरि कृपा निधाना, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। श्री राम जी से आज्ञा लेकर ये वानर योद्धा सीता जी की खोज में आगे बढ़े।

0: उस तपस्विनी को प्रणाम किया, अपना वृत्तांत सुनाया, उससे आज्ञा लेकर जी भर स्नान किया, वाटिका से मधुर फल तोड़ तोड़ कर खाए, थोड़ी देर आराम किया। तब तपस्विनी ने इन्हें अपनी कथा सुनाई और कहा, मैं तो अब वहां जा रही हूं जहां भगवान रामचंद्र हैं, उनसे उनकी अनपायनी भक्ति पाकर बद्रिकाश्रम चली जाऊंगी। तुम लोग इस विवर से निकलकर आंखें मूंदना, आंखें मूंदते ही सिंधु तट पहुंच जाओगे।
1: कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। अवधि समाप्त हो चुकी है और काम कुछ भी नहीं हुआ।
2: दोनों प्रकार से अब तो मृत्यु दिख रही है। इधर सीता जी का पता नहीं लग रहा, कब तक इन पनों में भटकते रहेंगे। किष्किंधा लौटे तो बानर राज हमारा वध कर देंगे। मेरा वध तो वो मेरे पिता की मृत्यु के साथ ही कर देते। भगवान श्री राम ने मेरी रक्षा कर ली। सुग्रीव का मुझ पर कोई एहसान नहीं है। अब मुझको तो अपनी मृत्यु में कोई संदेह नहीं दिख रहा।
1: सुनो युवराज, तुम्हारे कारण सभी अधीर हो रहे हैं, सभी की आंखों में पानी है। ये हम सबका निर्णय है। हम सीता जी की सूचना लिए बिना किष्किंधा नहीं लौटेंगे।
3: आओ लवण सागर के तट की ओर चलते हैं।
1: यहां कुशा बिछाकर थोड़ी देर विश्राम करें।

0: Ja.
1: Ik kan niet zien wat dat is.
2: Ik heb niet जटायु का बड़ा भाई संपाती तो नहीं
3: मेरा विचार है वही है
0: हाँ सब ही कह पर जाने का रहा हूँ चले आहार बिन मर सब ने मिल भरी उधर आहार आज दिन विधि एक ही बार
1: अब तो साकार मृत्यु सामने आ खड़ी हुई है
2: इससे निपट लेंगे सोचने की क्या बात है
1: वास्तव में किथराज जटायु के समान कोई धन्य नहीं हो सकता वे परम भाग्यवान है जो भगवान राम की काज अपने प्राण त्याग कर परम धाम
0: सुनो बंधु मुझे समुद्र के तट तक ले चलो मैं जटायु को
4: मैं तुम्हें सीता जी के बारे में बताऊं

0: सुनो वानर वीरों, मैं और जटायु बचपन से ही महत्वाकांक्षी थे। यौवनावस्था में मैं और वो सूर्य तक पहुंचने की आकांक्षा में उड़े। सूर्य की अपार तेज को सहन न कर सकने के कारण वो तो पथ से ही लौट आया, पर मैं दम भी उड़ता ही चला गया। रवि के निकट पहुंच गया, सूर्य के अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं घोर चीत्कार के साथ धरती पर गिरा।
1: फिर
0: चंद्रमा नामक ऋषि को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने मेरा उपचार किया, अपने ज्ञान द्वारा मेरे दंभ को नष्ट किया। उन्होंने ही मुझको बताया था

0: त्रेता युग में भगवान मनुष्य का रूप धारण करेंगे। राक्षसपति उनकी पत्नी सीता का हरण करेंगे। सीता की खोज में प्रभु अपने दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तेरे दुख दूर हो जाएंगे, तेरे पंख हो जाएंगे। तू उन्हें सीता दिखा देना। आज ऋषि की वाणी सत्य हुई है।
1: सीता जी कहाँ है?
0: हाँ, देखो उधर, देखो उधर, त्रिकूट पर्वत पर लंका वसी हुई है। वहां रावण निडर होकर राज्य करता है। उसी की अशोक वाटिका में सीता जी विचार मग्न बैठी है। मैं उनको देख रहा हूँ, मैं देखा हूँ, तुम नहीं। गीधी दृष्टि अपार, बूढ़ भयं उन्नत करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हार। तुमसे जो भी शतयोजन समुद्र पार कर जाएगा, उसे ही भगवान का कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दृढ़ता से काम लो, राम को हृदय में धारण करो। देखो देखो, प्रभु कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया है, पंख उगाए हैं। कायरता छोड़, लंका पहुंचने का कोई उपाय करो। अच्छा अच्छा, मैं चलूंगा।
1: बूढ़ा हो चुका हूं, अब शरीर में तरुणाई का लेश मात्र भी नहीं रहा। जब भगवान राम ने वामनावतार लिया था, तब मेरे शरीर में अपार शक्ति थी। बलि को बांधते समय प्रभु ने अपनी देह इतनी बढ़ाई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर मैंने दो घड़ी में ही दौड़कर प्रभु के उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी।
2: मैं समुद्र पार तो जा सकता हूं, किंतु लौटने के बारे में मेरे मन में कुछ संदेह है।
1: तुम सब कुछ कर सकने में समर्थ हो, किंतु तुम हमारे नायक हो, तुम्हें हम कैसे भेज सकते हैं? हनुमान, हनुमान, महाबली, तुम चुप क्यों बैठे हो? पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निथाना। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम्हारे लिए कठिन है, जिसे तुम नहीं कर सकते? भगवान श्री राम का कार्य पूरा करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है।
2: हनुमान जी का ये अद्भुत रूप है, लगता है जैसे साक्षात सुमेरु पर्वत हो।
3: मैं इस समुद्र को खेल खेल में ही पार कर जाऊंगा। मैं सहायकों समेत रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां ला सकता हूं।
4: जामवंत, मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन तीन जब मोई।
1: तुमने हम सबको उबार लिया है तात, बस तुम इतना ही करो, सीता जी को देख और उनके समाचार लेकर लौट आओ। उसके उपरांत कमल जैसे नेत्रों वाले श्री राम राक्षसों का संहार करेंगे। कौतुक के लिए वानर सेना भी साथ होगी।

सज्जन दे गल लगियां लगियां पैगी राती अंधेरी सज्जन दे गल लगियां लगियां पैगी राती अंधेरी ओ जान भी दे हुण सोहणिया।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।